प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street, North East, Calgary।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 28 पुजा होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2120-3961 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेन ले तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

आनंद साहब का बचन पढ़ते हो तो गुरु अमरदास पिता के बचन ने ऐसा सतगुर जी मिला तिस नूं सिर सौंपी है विच्चों आप जाए सिर सौंप दिओ। ये की कहानी गुरु की संगत, एक ता इस दी व्याख्या धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी करेगी। सिर किवें सतगुरु नूं दईए, इहदे बदले अज शब्द वरत्या गरीब अनुवाद पिता जी ने, मैं मन तन अर्प धरियो गुर आगै सिर वेच लियो। सिर वेचिआ ए, मुल महिंगा परे दा मुल बहुत मिलिआ है। साडे सिर दे अंदर खन सोचां, साडे सिर विच दुनिया ने तीन चीजां पा दित्तियां ते लगातार पा रही है। जिन्ना चिर वो तीन चीजा साडे सिर विच होणगीआं, असीं कदे सुखी नहीं हो सकदे। भावें कोई गरीब है ते भावें कोई अमीर है। भुलेखा है महाराज ने नरपत राजियां दी गल कीती है, वड्डे वड्डे भी। तीन चीजा सानू दुनिया देंदी कै गुरु के प्यारे, जिहड़ा बीत चुका समय साडी जिंदगी दा सानू पछतावे खान, काश मैं बच्चिया लई इन्नी मेहनत करदा रहा, मेरे आखे नहीं लगदे। किधरे बच्चिया दा बच्चे पछता रहे खन, साडे मापे किहो जिहे। मित्र ने मेरे नाल चंगा नहीं किया, पार्टनर ने चंगा नहीं किया, कुछ ना कुछ बहाना है। हर बंदा बीत चुके समय ते पश्चाताप कर रहा है, ये साडे सिर विच हमेशा रहिंदा है। मैं किसी का बुरा नहीं किया, मेरे नाल खोया, पछता रहा है। दूसरी गल, आउण वाले समय का सानू डर है, पता नहीं कल साडा की बनेगा, पता नहीं साडी जिंदगी किहो जे खूह खाते च पैगी, चंगी रहेगी कि नहीं। है कुछ नहीं, अजे आया नहीं, पर डरे हुए हैं। हुण साडे कोल की इस वक्त एक शिकायत, किसे दे कोल खलो जाओ, दुनिया की गल चाहे रब की, हर बंदा शिकायतां नाल भरिया पिया है। शिकायत हमेशा हंकार चो निकलदी, मैं सियाणा ते दूसरे अणजाण, उन्हां नूं पता ही नहीं, एवें शिकायत करी जानी निक्कियां निक्कियां गल्लां ते। गुरु के प्यारे सोचो, जिहड़े सिर विच जां पछतावे दा भार होवे, जां उहदे अंदर शिकायतां ही गिले ते शिकवे भरे होण ते डर होवे, वह बंदा कदे शांत हो सकता है, कदे सुखी हो सकता है। महाराज कहिंदे, देख एक चीज असी तेनू देन लगे हाँ, जे तू ओ चीज अपनी जिंदगी च तू रख लै कोल, अपने सिर विच पा लवें, ओ सिर ते जदों पैगी ते सिर साडा होएगा, ओ तू सिर सानू वेच दे, जो कुछ असी कहने हाँ ना ओ कुछ करना शुरू कर दो। अपनियां सोचां, अपने फिकर, अपनी सियाणप, जो कुछ भी तुहाडे कोल सियाणप पे तुहानूं बहुत चंगी लगदी, छड्ड दिओ। उस दी जगह ते सतगुरु जी जो कहिंदे ने उह शब्द नूं पा लो। महाराज जी थोड़ा इहनूं खोलो, गुरु अमरदास साहिब जी दा इक बचन ध्यान विच लिआया जी। गुरु साहिब कहिंदे, नानक सेवक सोई आखीऐ जो सिर धरे उतार। कहिंदे साडा सेवक जिन्ने बनना है ना, वह अपना सिर उतार देवे। महाराज जी सिर तिरपान नाल वढ़ के तुहानू देना है? नहीं महाराज, कहिंदे उह तिक्को वारी घटना घटी सी आनंदपुर साहब, असी तुहानू रोज ये बचन सुनाने हाँ, असी तुहाडा रोज सिर मंगदे हाँ, तिखार पल मंगदे हाँ। सेवक अपने कोल सिर रखदा ही नहीं जिन्हें सेवा करनी। गुरुखानियत दी बोली कै प्यारे, उहदे फार्मूले तरीके वखरे हुंदे, दसदे ने। अगली पंक्ति है, सिर किवें उतारीदा है। सिर वेच के मुल महिंगा इहदा मिलिआ, सिर वेचना किवें ते मुल की लैणा इहदे बदले। अज गुरु रामदास साहिब जी ने कृपा कीती, उह गुरु अमरदास साहिब दा बचा ने, हजूर कहिंदे सतगुर का भाणा मन लै इक गल, दूसरी शब्द रखै उरतार। दो चीजा जी कहिंदे, सदा अंदर वाहिगुरु शब्द नू रखण दी कोशिश करो। रखण दी कोशिश करांगे जी पहला जपांगे, उन्हें अंदर नहीं रहना। भाणा मनण दा इह नहीं मतलब हुंदा कोई घाटा पै गया।

आओ सुनिए प्यारे, गुरु रामदास साहब जिन्हों प्यार करते हैं ना, बचन सुनना हुक्मनामा साहब प्रारंभ करते हैं। जदों कोई नाम जपदा है ते इहदे नाल की साडी जिंदगी विच आ सकदा है ते आउंदा है ते आया है। आओ प्यार

कि प्यारो हे परमेश्वर जी तुसी वड्डे हो स्वामी हो मैनो एक निमक को जितना समय दा नाम दा दान कर दियो उदे नाल ही मेरा सारा कार्य

0: परमात्मा करके किधरे चला नहीं गया, उनू वेखदा है रोज, हर पल वेखदा है। जदो ओ वेखना छड़ देगा ना, असी रहना ही नहीं। वो इन्ना नेड़े है ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिथे नाम जपण दा हुक्म देंदे, सेवा करन दा, घड़ी मुड़ी एक गल कहिंदे, उनू नेड़े वेखो भाई, उनू दूर ना समझो कि रब किधरे दूर है, वो नेड़े वे, तुसी किधरे दूर चले गए। महापुरखा ने एक लाइन वरती, वो कहिंदे कैसी खेड, परमात्मा साडे घरों कदे बाहर नहीं जांदा, ते असी कदे अपने घर पैर जिंदगी च पांदे ही नहीं। इत्थे बैठियां ते ख्याल करदे, घर गए ते ख्याल होर किधरे, इंडिया बैठियां ते ख्याल अमेरिका दे, अमेरिका च बैठियां ते ख्याल इत्थों दे, घर आउणा ही नहीं। ते ओ रब घर से, नाम जपांगे घर आवांगे, फिर कहांगे घर सुख वस्या, बार सुख पाया। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाए, गल्लां नहीं एक प्रैक्टिकल करिए। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज एक एक बचन साड़ी जिंदगी नूं रंग लांदे। अज कहिंदे ओ वेखदा है कर करके, बेपरवाह जी सदा कैम रहण वाला खै।
1: वेकी वेकी जंत उपाए,
0: वेकी वेकी दा मतलब हुंदा है

प्यारियों मुक्ती नहीं जे, इस लई सतगुरु कहिंदे सच्चा नाम जपो लाखा लो। लाखा केवल ते केवल नाम विच्चों मिलता है, जिथे भी गुरबाणी च आएगा ना लाखा, इको ही लाखा, मतलब ओए खर नाम, नाम जप

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue North East Calgary।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
1: परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब जी की असीम कृपा से आज हमें ये यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमें ये मालूम हुआ हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हम इस गंदे लोक में कैसे फंस गए हैं, अब हम यहां से कैसे छूट सकते हैं, हमारा मूल ठिकाना मूल स्थान कहां पर है। अब हमें ये भी पता चल रहा है कि हम कोई भी प्राणी चाहे कितना ही वृद्ध है, कितना ही रोगी है, कोढ़ी है, कितना ही मानसिक परेशान है, कितना ही उसको घाटा होता है, कोई भी व्यक्ति मृत्यु नहीं चाहता। और ये पता होते हुए कि मृत्यु डेफिनेट है और फिर भी हम बिल्कुल मरना नहीं चाहते, चाहे कितने वृद्ध हो जावां, कितना ही हम दुखी हो जाएं। और ये बात बिल्कुल जायज भी है भी, क्यों तो सारा जीवन हम लगे रहते हैं अपने परिवार पोषण के लिए, अपना एक रैन बसेरा बनाने के लिए, और वो पूरा नहीं हो पाता, इतने मृत्यु होने की बारी आ जाती है। यू क्या सांग हुआ, क्या व्यवस्था हुई। एक विशेष विचारणीय विषय है कि इंसान सारा जीवन अपने परिवार पोषण में मकान बनाने और तथा कुछ आधुनिक सुविधाएं प्राप्त करने में सारा जीवन लगा देता है। बच्चों की शादी विवाह करके न्यू सोचा है कि अब मुझे कुछ राहत मिलेगी, इतने बुढ़ापा दस्तक दे देता आकर के लिए मैं भी आ गए भोले त्यार, कदे आंख बनवानी कि जाड़ पड़वानी कि शर्मा दर्द कि कड़े दुख है कमर में दर्द, ऐसी बिरान माटी हो इस जीव की। अब हमारे को दूर से दिखाई देने लग गया क्योंकि हमारा अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया परमात्मा ने, हमारे को आज वो वृद्ध अवस्था खड़ी दिखाई देती है। इसका विकल्प क्या है कि परमात्मा के चरणों में लगा रहने से, सच्ची श्रद्धा से भक्ति करने से वो दुख में समय हमारा आसानी से व्यतीत हो जाएगा। परमात्मा का सहयोग हमारे साथ रहेगा तो हमें बहुत हल्का बनेगा वो दुख। और जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते और अच्छी पोस्ट से रिटायर होते हैं और अच्छे उनको डिपॉजिट जमा पैसा उनका मिलता है और बच्चे उसी समय 50-50 कर लेते हैं और पिताजी के पास केवल पेंशन रह जाएगी, और फिर पेंशन के चक्कर में 31 तारीख ने पिताजी को पूछेंगे कब लाओगे पेंशन। एक भगत बता रहा था कि मेरा मित्र रिटायर हो रहा और बैंक के सामने मिल गया और साथ में उसकी पुत्रवधू, जितनी पेंशन मिली थी 5-4 हजार वह सारी उस पुत्रवधू ने ले ली उसका सामने, और उस बुढ़े ताई 10 रुपये दे दिए रिक्शा के, अगले दादा तू बैठ के घर न चाल, मैं बाजार में सामान ले आऊंगी। तो कहने लगी, मैंने पूछा भी आप किस लिए आई हो पेंशन लेने, तब बुढ़ा आया। वो कहने लगी, इसने दिखता कोई ना, गिन देना मैं गेल लाइक के गिनवा लू। वह जाली जब उन्हों कह बुढ़ा रहा गिन तो मैंने खूब आवे है, इसका नो सका कदे बुढ़ा के मैं राख जा दोबरा 10 रुपये रिक्शा के दे रखे बाकी सारे लेगी। कहने का भाव ये पुण्यात्माओं एक अच्छी पोस्ट

में सुने वचन खारी, बूढ़ा होवे पड़े खाट में सुने वचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को ना ये छाती फूकन हारे। भाई मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, बूढ़े हो जाते हैं आंखों से दिखाई नहीं दे, और बूढ़ा बुढ़िया की चारपाई गेट का डला करे, पुत्र वधू कह के जाएगी कि ध्यान रखना दूध को घी को कुत्ते बिल्ली ना खराब कर दे, मैं खेत में चारा लेने जा रही हूं। अब वो बुढ़िया ने दिखे को नहीं, कुत्ता बड़ा शैतान होता है, आंख में चोरनी करके रसोई में पाया करे। पुत्र वधू उनकी आई, देखा कुत्तों ने दूध भी खराब कर रखा और घी भी, तो बुढ़ा बुढ़िया को कहती है कि तुम तो छाती फूको मारी, तुम्हारा इतना सुख भी कोई ना, तुम कुत्तों ने हटा दो, यानी कुत्तों की से रखवाली कर दो। बुढ़ा हो वह पड़े खाट में सुने बचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को ना ये छाती फूकन हारे। ये टॉर्चर और नाले होगा गिल। तो इस तरह परमात्मा कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति गीताजी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान पर आश्रित होकर उन तत्वदर्शी संतों के संपर्क में जाकर उस तत्ब्रह्म से यानी परम अक्षर पुरुष से, परम अक्षर ब्रह्म से और सारे आध्यात्मिक ज्ञान से और सभी कर्मों से जो परिचित हो जाता है, तो वो केवल जरा मरण मोक्ष आए, जरा और मरण से मोक्ष के लिए यानी से छुटकारे के लिए ही प्रयत्न करते हैं। तो जरा मरण इसलिए बताया कि यहां बुढ़ापा सबसे डेंजरस टाइम है इस जीव का, और साथ में फिर मृत्यु उस बुंडी और होनी डेफिनेट। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहां मृत्यु नहीं होती थी, और ये मृत्यु हमें कति गंवारा नहीं है और यह हो रही है। इसलिए हमें यह सत्संग में आने से पता चलता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। ये जानकारी परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें दी है। वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपनी जानकारी आप ही बताते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। और यहाँ के भगवान, यहाँ के स्वामी काल भगवान, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको सर ब्रह्म सर पुरुष भी कहते हैं, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है। इसको एक श्राप लगा हुआ है, इसको एक बीमारी लगी हुई है, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने की, उसके लिए इसने हमें यहां पर पाल रखा है। पुण्यात्माओं, प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को दयालु बताता है, और भगवान उसी का नाम होता है, परमात्मा उसी को कहते हैं जो दुख ना दे केवल सुख दे। पुण्यात्माओं, और यहां के हम जैसे पदार्थ देखते हैं, बहते हुए झरने, गंगा जैसी दरिया, और दिन रात बन रहे हैं, बहुत अच्छी पृथ्वी दे रखी है, इसके ऊपर बाग बगीचे, काजू किशमिश सेब संतरे, और साथ में कितने अच्छे और बहुत से पदार्थ हैं। इन सब को देख करके ऐसे लगता है कि परमात्मा बहुत ही दयालु है, कितनी सुविधा हमें प्रदान कर रखी है। और जब हम समाचार में सुनते हैं या आसपास के क्षेत्रों में से पता चलता है दुर्घटना हुई जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य की मृत्यु होगी, कहीं पर भूकंप आ गया, अक्षेत्र का अक्षेत्र विनाश को प्राप्त हुआ, तो ऐसे हम देखें तो फिर परमात्मा की दयालुता शंका के घेरे में आ जाती है। पुण्यात्माओं, गीताजी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में, और गीताजी

अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 से लेकर 22 तक एक विशेष व्याख्या की है और गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में। इस गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा परमेश्वर बताया है। गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3, 8, 9, 10, 18 से 22, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4, 16 और 17 में, और भी बहुत से स्थानों पर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62, 66, अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 46, इनमें अन्य कोई परमात्मा है जो परमेश्वर है गीता ज्ञान दाता से और उसके विषय में जानकारी दी है। तो इन सब की जानकारी देते हुए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन परमात्माओं की व्याख्या की है, एक सर्वपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, राम कहो, जो सर्वपुरुष है, क्योंकि यही पवित्र सदग्रंथ हम पहले भी पढ़ा करते थे लेकिन वो अब परमात्मा की वाणी सच सिद्ध होती है। भाई सतगुर बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था उस छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु के बिना जो वेद पढ़ते हैं वो कुछ नहीं समझ पाते, अज्ञानी ही रहते हैं, और गुरु जी के बिना, सतगुरु के बिना किसी को भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। वो तो ऐसे रह गए जैसे थोथे भूसको, यानी जैसे धान होते हैं उन दानों को झाड़ लेते हैं, उसके पास प्राण रह जाती है, कोई उस प्राण के ऊपर लठ बजा रहा है, लाठी मार, डंडे मार, उसने पटक पटक का मार रहा, झाड़ रहा है, कुछ नहीं निकला है, वो थोथा भूस है। तो ऐसे ही जो तत्वदर्शी संत के अभाव से जो ज्ञान वेदों को, गीता आदि अन्य सदग्रंथों को पढ़ते हैं, वो तो ऐसे हैं जैसे थोथे उसको कूट रहे हों, अर्थात यूजलेस, निराधार, यानी बगैर किसी लाभ के, किसी वो उसका प्रयत्न है, उससे कोई लाभ नहीं, यूजलेस। तो प्रसंग हम यहां ये क्लियर करना चाहते हैं कि एक तरफ तो परमात्मा दयालु कहते हैं, और फिर यहां दया नाम की चीज नहीं, मां के पेट से नंगा आता है ये बच्चा, और शुरुआत कहां से हुई थी इसके, अपना कोई लंबे लंबे पत्ते वृक्षों के जोड़ तोड़कर अपना शरीर को ढका करते थे, धीरे धीरे बुद्धि विकसित हुई, परमात्मा की दया हुई तो कपड़ों की खोज होगी, और भी सुविधाएं बहुत सी हमने बना ली अपने स्तर पर। आप कहीं जंगल में जा रहे हो, वर्षा आ जाती है, सारे भी जो बीमार हो चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, ओले गिरते हैं, मट मट शर्म लागे, कट्टा कट की तब भाज दौड़ के जान बचा ली तो बचा ली ना, सारा फूट जाए, बेहोश हो जाए, फलट आ जाती है, कितने का जाओ, कोई जच्चा मरो चाहे बच्चा मरो, रोगी मरो चाहे जवान मरो, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं। तो इन बातों को देखकर फिर अब हमें डर लगने लग गया, क्योंकि हमारी आंखों का जो ऑपरेशन हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार हट गया, और हमने उस दयालु भगवान का पता लग गया। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन भगवान है, पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। श्रीमद् भगवत गीता और इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, अधिक से अधिक यही बिक्री है और इसी का नित्य पाठ किया जाता था, नित्य स्वाध्याय के लिए इसी का प्रयोग होता रहा ज्यादातर। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का अपने हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16-17 में तीन परमात्मा अलग अलग दिखाए, अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर ये 16 इधर है, ये 16। इसकी संस्कृति भी हम देखेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है, कोई दिक्कत नहीं। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके, सरे शर, शरे च अक्षरे एव च,
सरे सर्वाणी भूतानी कटुस्तय अक्षर उच्चते। इसका अर्थ ये बना है कि इमो माने इस, लोके माने लोक में, दिवो माने दो, पुरुषो माने परमात्मा प्रभु स्वामी है, दो भगवान है, एक सर एक अक्षर। इसको इस दोनों को हम यहां भी लगा सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। इस संसार में दो भगवान हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो परमात्मा हैं। और इसी प्रकार इनके लोक में सर माने नाशवान, सर्वाणी भूतानी, सभी प्राणियों के स्थूल शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अक्षर माने अविनाशी कही गई है। इव सर माने तो नाशवान, अक्षर माने अविनाशी, सरय माने नाशवान, अक्षर माने जो नाशवान ना हो अविनाशी कहा गया। तो यहां इसमें दो भगवान लिखे, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार इनके लोकों में स्थूल शरीर तो सबके नाशवान है, इनके भी दोनों के, इस अक्षर पुरुष के भी, और जीवात्मा ये तो किसी की मरती ही नहीं, कुत्ते की भी नहीं मरती, गधे की भी नहीं मरती। इन्होंने अनुवाद किया है, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष, पुरुष माने प्रभु हैं। इन्होंने लिखना था, इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये भी दो प्रकार के परमात्मा हैं, भगवान हैं, पुरुष हैं, प्रभु हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता। अब यहां किया कमाल 70वें में, उत्तम पुरुष है तो अन्य पुरुष माने प्रभु, उत्तम पुरुष श्रेष्ठ प्रभु पुरुषोत्तम तो अन्य ऊपर वर्णित इस सर पुरुष और अक्षर पुरुष से, इन दोनों से कोई और है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये दास इस परमात्मा शब्द को डिफाइन करना चाहता, उसके लिए इतना कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा, इतना लंबा चौड़ा उदाहरण बनाना पड़ेगा। उत्तम पुरुष है तो अन्य, पुरुष भी लिखा है और परमात्मा भी लिखा है। उत्तम पुरुष है तो अन्य, ऊपर वालों से दोनों भगवानों से कोई और है जिसे परमात्मा उदारतम माने कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोकत्रयम जो तीनों लोकों में आविश्य माने प्रवेश करके विभर्ति सबका धारण पोषण करता है, वह अवय ईश्वर है। ये अवय शब्द है, ये अविनाशी, वो अविनाशी परमात्मा है, ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, यानी सही भगवान श्रेष्ठ परमात्मा तो ऊपर वर्णित दोनों से कोई और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और उसको अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये दास बताओगा, अब उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, या पुरुष और परमात्मा दो शब्दों का प्रयोग या अक्षरों का प्रयोग हुआ। अब ऊपर 16वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में अक्षर पुरुष भी कहा है। अक्षर पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी प्रभु, और सर पुरुष का अर्थ सीधा ही नाशवान परमात्मा। पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये अक्षर क्यों कहा और फिर नाशवान कहा अक्षर पुरुष को। गुणात्मा ये सर पुरुष जो है, सर पुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ब्रह्म कहते हैं, और इसका ओम नाम है, ओम मंत्र है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत् सत् इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने उस अक्षर पुरुष का जो इन दोनों से अलग है, उस परमात्मा के पाने का ओम तत् सत् तीन मंत्र का जाप है। उसमें ओम जाप सर्वब्रह्म का और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, और सत ये भी सांकेतिक है, दास बताएगा ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का, यानी पूर्ण ब्रह्म के। ये इनका अलग अलग मंत्र है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सर्वपुरुष यानी ब्रह्म, जिसको ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं।
जिसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दिया, श्रीमद भगवत गीता का ज्ञान दिया। और ये तो सीधा ही सर पुरुष है, ये तो नाशवान है। और अक्षर पुरुष, अक्षर का अर्थ ही अविनाशी होता है, लेकिन अक्षर पुरुष भी नाशवान है, ये अविनाशी नहीं है। अब इसको डिफाइन करना है, अविनाशी भी कहा और नाशवान भी कहा, जैसे इविन की एज देखनी पड़ेगी। ब्रह्म के तीन पुत्र हैं इस काल के, ज्योति निरंजन के, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। वो वर्ष कैसे बनते हैं? एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों का मिलाकर के 43,20,000 वर्ष का समय होता है। इसको चतुर्युगी कहते हैं, चतुर्युग कहते हैं। और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का, ब्रह्मा जी का दिन इतनी ही रात्रि, इसको लमसम 1000 युग का दिन इतनी ही रात्रि मानकर चलते हैं। और 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु, 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। इससे सात गुना सतगुण विष्णु जी की, 700 वर्ष इस प्रकार बने हुए वर्षों के। और इससे सात गुना 4900 वर्ष श्री शंकर भगवान सप्तम गुण की। और 70,000 बार जब तमगुण ये शंकर की मृत्यु हो जाएगी, तब एक युग होगा, किसका? उस अक्षर पुरुष का एक युग। और 1000 युग का दिन, इसमें चतुर्युग नहीं है, इसकी काउंटिंग में ब्रह्मा जी की आयु में चतुर्युग है, और अक्षर पुरुष की आयु की कैलकुलेशन में चतुर्युग नहीं है, ओनली युग है। 1000 युग ऐसे बने हुए हैं, 1000 युग का दिन इतनी ही रात्रि है अक्षर पुरुष की, और 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की, यानी फिर भी मृत्यु है।

0: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-777-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th Street साउथ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
4: प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर
5: अपने आत्माओं, अभी पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता अपनी भक्ति और मंत्र के विषय में विशेष रूप से बताता है के ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदनदेहं सयाति प्रभावगति। मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो प्राणी श्री त्याग कर जाता है वो ओम नाम के जाप से जो परम गति होती है, जो उपलब्धि होती है उसको प्राप्त करता है। अब यहां एक साथ, क्योंकि आप जी परमात्मा की तरफ में बहुत घूम रहे हो, आप जी ने बहुत से संत भी मिले हैं, आपने बहुत से संतों का लिटरेचर भी पढ़ा है, आपको ये विशेष बताने की आवश्यकता नहीं भगवान बजलो काम आओगा। आपको ये प्रमाणित करना अति आवश्यक है कि परमात्मा कौन है, कैसा है और कैसे मिलेगा, उसका डिफाइन करना आपके सामने अति आवश्यक है विद प्रूफ। तब भक्ति तो आप पे कर लोगे, जब ये पता लगेगा सत्संग रहकर सत्संग सुनाएंगे। तो अब ये डिफाइन करना चाहते हैं कि हमारे सदग्रंथ हमें क्या अनमोल खजाना दे रहे थे और ये ज्ञानी अनाड़ी संतों ऋषि ब्राह्मणों ने गुरुओं ने नकलियों ने हमारे को उल्टा पाठ पढ़ा रखा था, कह कह भी नहीं बता रखा भक्ति का, ए बी सी भी नहीं बता रखी। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, सुबह भी बताया था कि वो तत्परम कौन है जिसके बारे में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्रीमद भगवद गीता में बताया है। उसका उत्तर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया है गीता ज्ञानदाता ने कि परम अक्षर ब्रह्म है। एक तो अक्षर ब्रह्म को चाहे अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष से भी श्रेष्ठ और परम है। गीता जी अध्याय नंबर 5 और 7 में तो अपनी सतीथि बताता है, मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा। और 8, 9, 10 में परम अक्षर ब्रह्म के विषय बताता है, उसकी भक्ति जो करता है उस तत्वदर्शी संत से वो 3 मंत्र का नाम जाप लेके वो उसको प्राप्त होता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी ब्रह्म लोक यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है, ब्रह्म का जाप है और ब्रह्म लोक में चला जाता है जिसको महास्वर्ग भी बोला जाता है। और वहां जाने के बाद भी फिर प्राणी को वापस जन्म मृत्यु में आना पड़ता है। गीता जी ज्ञान दाता ये ब्रह्म स्वयं कह रहा है गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो अनुवादी अनुवादकर्ताओं ने किया है बिल्कुल गलत रखा है, उसको अब स्पष्ट करना चाहते हैं। तो उसमें बताया कि जो उस परमात्मा की भक्ति करता फिर उसकी दोबारा जन्म नहीं होता। और अक्षर पुरुष की यहां आयु कैलकुलेशन बता रखी है 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में आपको दिखाते हैं। अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 16 में कहा है ये अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती में, यानी ब्रह्म लोक तक भी सभी का जन्म और मृत्यु होता है। ये इन्होंने इस पर इसका विश्लेषण नीचे किया है, पुनरावर्ती का क्या अर्थ होता है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 4, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भलीभांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। यानी कोई और है गीता ज्ञानदाता से, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, प्रपदेवा ने पूजा करनी चाहिए, उसकी साधना करनी चाहिए, जहां जाकर फिर लौटकर संसार में नहीं आती। और गीता ज्ञानदाता कहता है तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होते रहे, ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी पुनरावर्ती में है। इन्होंने आगे अनुवाद गलत किया है कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, नहीं तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 का ये सारा आशय खत्म हो जाता है। यहां इसका अर्थ बनता है कि जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु होती है, वो मुझे प्राप्त होकर फिर भी ब्रह्म लोक में जाते हैं तो भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, इसका अर्थ ये है। अब इसका 8वें अध्याय का जो आपने 16वें श्लोक का सुना कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, इससे सिद्ध हुआ कि ओम नाम और ब्रह्म की साधना करने वाले भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यहां कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है ये दास कि इन्होंने अनुवाद गलत किए हैं। 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस अक्षर पुरुष की आयु बता रखी है, 8वें अध्याय का 17वां श्लोक, ये 8वें अध्याय का और ये 17वां श्लोक, ये 16वां आपने देखा कि आ ब्रह्मनाथ यानी हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में, वहां गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। 17वां इसमें देखना, सहसर युग पर्यंतम, सहसर युग है यहाँ, सहसर चतुर्युग नहीं है, ये ध्यान करना यहाँ, क्योंकि ये मूल संस्कृत को हम अनुवाद करेंगे, इन्होंने गलत किया हुआ। इसमें सहसर चतुर्युग नहीं है, सहसर युग पर्यंतम, अह माने दिन और यथ ब्रह्मणे माने इस अक्षर पुरुष का, ब्रह्मणे का अर्थ होता है क्योंकि यहाँ आयु कैलकुलेशन है, तो यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ बनेगा इस अक्षर पुरुष पर ब्रह्म का, बड़े भगवान का, ब्रह्म से जो बड़ा है, ब्रह्मण है बड़ा, उससे बड़ा विदु जान, रात्रिम रात्रि भी, युग संसरांतम, इसमें चतुर युग नहीं है, अहो रात्रि विदु जना ब्रह्मा, इन्होंने ब्रह्मण का अर्थ लिख दिया ब्रह्मा, नहीं परब्रह्म लिखना चाहिए, परब्रह्म यानी उस ब्रह्म से नष्ट प्रभु या अक्षर पुरुष का जो एक दिन है उसको इन्होंने अनुवाद गलत किया है। 1000 चतुर्युग, चतुर्युगी तक की अवधि वाला, यहां पर सेंसर युग पर्यंतम, नोट चतुर्युग, इसमें चतुर्युग नहीं है, तो यहां गलती कर दी इन्होंने, इन्होंने ब्रह्मा बना दिया ब्रह्मण का, परब्रह्म को। अब जिसने ज्ञानी नहीं है तो वह ऐसे गुड़ गोबर कर देता है, सदग्रंथों का भी जो आशय बदल देता है उसका अपने नालायक बुद्धि के कारण। ब्रह्मा का यहां ब्रह्मा नहीं, ये परब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष का जो एक दिन है वो 1000 युग, 1000 युग का है, नोट चतुर्युग, चतुर्युग नहीं है, और इतनी ही रात्रि जानो, और जो पुरुष इसको तत्व से जानते हैं वह योगी जन काल के तत्व को जानने वाले, यानी वो तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं इन कोड वर्डों को। अब आजिए फिर अपने वहीं आते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। कैसे? जैसे भी आपको बताया था कि एक ब्रह्मा जी की आयु कैसे बनी थी, 1000 चतुर्युग का दिन, उतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष, 100 वर्ष की आयु, उससे 7 गुना विष्णु की, विष्णु जी से 7 गुना शंकर जी की, शंकर जी की मृत्यु होगी इतने समय के उपरांत। ऐसे ऐसे 70,000 बार जब शंकर जी की मृत्यु हो लेगी तब एक काल की मृत्यु होगी, इस ब्रह्म की मृत्यु होगी जो गीता ज्ञान दे रहा है। इसके बाद क्या होता है, एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा, ये सभी प्राणी और ये काल और दुर्गा सभी मृत्यु को प्राप्त होकर उस परमेश्वर की कृपा से ये सभी प्राणी दूसरे लोक में चले जाएंगे, ब्रह्मांड में। वहां जाते ही परमात्मा का वर है इन दोनों को, दुर्गा और इस काल को, इनके एकदम वहां जाते ही युवा शरीर बन जाएंगे और ये दोनों युवा होंगे, फिर उसके बाद ये नए सिरे से अपनी सृष्टि, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति आदि फिर ये करेंगे, कुछ दुर्गा वचन से कर देती है, कुछ ऐसे सृष्टि क्रम से करते हैं। तो वो जो ये काल मरेगा, एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, वो एक युग होगा, किसका? इस अक्षर पुरुष का। इसलिए यहां चतुर्युग नहीं लिखा है 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता जी में, ओनली युग कहा है, 1000 युग का दिन और उतनी ही रात्रि होगी, ऐसे बना हुआ युग, एक काल की मृत्यु एक युग होगा, और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी रात्रि, 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे 100 वर्ष की आयु होगी, किसकी? अक्षर पुरुष की। इस प्रकार इसको भी अविनाशी कहा, लेकिन ये भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। जैसे एक कप है चीनी का बना हुआ, सफेद मिट्टी सी का, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो समझो सरपुरुष है इसका, ऐसे मेटेरियल का शरीर, इसके प्राणियों का, इसका ये तो अंडरस्टूड है, फरस पर गिरा और टुकड़े टुकड़े, क्रैक जरूर होगा। और दूसरा एक स्टील का कप हो चाय पीने का, यानी स्टील धातु से बनी हुई कोई वस्तु हो, तो वो उस मिट्टी की धातु से बने हुए कप के तुलना में घना अविनाशी है, बहुत लंबे समय में हो तो होगा खराब, उसको जंग लगेगा लेकिन वो पीरियड बहुत लंबा होगा। इस प्रकार उस धातु की तुलना में, मिट्टी वाली धातु की तुलना में शटील धातु अविनाशी कही गई है, लेकिन है इसका विनाश, जैसे सोना ये ऐसे जंग से विनाश को प्राप्त नहीं होता, तो इसको अविनाशी हम कहें। तो ऐसे ही अविस अक्षर पुरुष को अविनाशी कहा कि इसकी इतनी लंबी आयु है लेकिन मरेगा, मृत्यु इसकी भी होगी, लेकिन सर पुरुष की तुलना में इसको अक्षर पुरुष ही कहा। आगे फिर इसका निर्णायक ज्ञान दिया है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष तो कोई और ही है, श्रेष्ठ प्रभु तो कोई इन दोनों से कोई अन्य है, और परमात्मा इति उदारते जो परमात्मा कहा जाता है। अब यहां परमात्मा की डेफिनेशन आपको बताने जा रहे हैं कि परमात्मा उसे कहते हैं जो केवल सुख दे दुख ना दे। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि वो परमात्मा कहा जाता है, वो तीसरे नंबर का, और ये लोक तरम आविश से विभर्ति अवे ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब पहले ये प्रसंग क्लियर करते हैं कि परमात्मा इति उदारते हैं, जैसे अभी आपको बताया था कि इस पृथ्वी के ऊपर हम सुविधाएं देखते हैं तो अद्वितीय लगती हैं, जमीन के अंदर कितना मीठा जल, गर्मियों में ठंडा सर्दियों में गर्म, फलदार वृक्ष काजू किशमिश सेब संतरे और ऐसे पदार्थ लाडू जलेबी बर्फी बालूशाही के में बना के खा ले, और फिर देखते हैं कि किस पड़ोस में देखा कि वहां हाहाकार मच गया, क्या हो गया, इकलौता पुत्र था मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर समाचार पत्रों में सुनते हैं कि एक परिवार के 3 सदस्य मर गए, एक शेष बच गया छोटा सा बालक एक्सीडेंट में, तो फिर भगवान ने जो सुविधाएं दी थी उनका यूज क्या हुआ, हमें फिर वो दयालु कहां रहा प्रभु। परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 यानी 82 के मंत्र नंबर 1 से लेकर 3 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27, इनमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर देव सतलोक से अपने अमर धाम से सनातन परम धाम से गति करके आता, वहां से चलकर आता है और वो अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। तो उन श्रेष्ठ आत्माओं में से एक आदरणीय धर्मदास साहिब जी थे। धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि धर्मदास तुम यहां जो अपनी संतान संपत्ति और जो सुविधाएं आप मान रहे हो हमारी है नहीं, काया तेरी है नहीं ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खो। जब काया तेरी नहीं है, ये शरीर तेरा नहीं है, विनाश होगा तो अब माया तेरी कैसे होगी। तब धर्मदास जी ने पूछा है परमात्मा ये है क्या, फिर ये सांग है। तब परमात्मा ने कहा धर्मदास ये ऐसी व्यवस्था है, ये कसाई है, ये काल यहाँ का जो भगवान है जिसको ब्रह्म कहते हैं, सरपुरुष जिसको कहते हैं सरपुरुष, सरब्रह्म भी इसी को कहते हैं, ज्योति निरंजन इसी का नाम है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन और सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण काल नहीं थे, न पहले कभी काल कहा गीता जी ज्ञान से अलग, ना बाद में कभी अपने आप को काल कहा। वो काल बोल रहा था भूत की तरफ उसमें प्रवेश करके प्रेत मत, मैं काल हूं और ये देख मेरा ये रूप है, 1000 भुजा 1000 पैर 1000 फंड दिखाई दिया, कलजा पाट दिया इसे योद्धा का। भगवान तो भगवान के दर्शन के लिए हम जाते हैं, अरीसा भगवान होता है, विश्वास था तू मर जा कि जिस अर्जुन ने दिखाया कि मेरा यू असली रूप है, तो भगवान के दर्शन इसलिए करने जाते हैं, देखते आत्मा प्रसन्न हो, शीतल स्वभाव हो, बोलने की विनम्रता हो, प्यार मिले, दुख ना हो, सुखी सुख हो, इसलिए भगवान को ढूंढते। ऋषि बुढ़े ने देखते कलजा पाट दिया, पता उसने के गड्ढा, इसे भगवान ने, तो वो कहे ये है मेरा असली रूप और मैं काल हूं। और हम इसकी पूजा किया करते थे, और इसकी पूजा करने वालों को महर्षि कहा करते थे, बड़े विद्वान है। तो परमात्मा ने बताया काल है भाई, ये पहला तो सरूमती साजी खजन भगवान पड़या है, और जब इसका असली चेहरा सामने आता है, इसे करतूत देखा तो काल है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उनके लिए सब सुविधाएं करता है, चरागाह बनाता है, और उसके चारों तरफ हिंसक पशुओं से रक्षा के लिए उनके लिए एक डिफेंस तैयार करता है, ऊपर छाया बनाता है, शेड बनाता है उनके लिए, पानी का तालाब बनाता है, उनको पानी पिला कर लाता है, चराता है, उनके ऊपर का हाथ उठ फेरे उन्हें लाड। तो वो देखता है, जब कसाई आता है पशुओं के अंदर अपने, और वो देखता है से हाथ ला करके, वो तो नहीं देखे यू कै किलो का हो गया, कितना मांस बना इसमें, और वो बोली आत्मा नहीं समझ बकरे और बकरियां कि हमारा कितना दयालु स्वामी है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी सुविधा का ध्यान रखता है, ये हमारा प्यारा है। उनको प्यारा समझकर उसको चाटते हैं, उसके ऊपर पैर फैलाते हैं, सीने से लगाना चाहते हैं, और वो इन्हों देखे ये कितने किलो का हो गया, कितने का बिकेगा। उधर तो सुविधा देता है जब तो वो अच्छा लगे, और फिर जब आ जा दो चार बकरों की डिमांड, वो ना देखता किसका बेटा जाएगा, किसकी माँ जाएगी, किसकी बुआ कटेगी, वो तो लाठी लेकर आके ले नारी काट देता मोटे मोटे छांट। तो ऐसी व्यवस्था इस काल के लोक में हमारी श्री विष्णु पुराण में स्पष्ट किया है, क्योंकि ये पुराण जो है श्री विष्णु पुराण जब शुरू होती है इसमें काल भी विष्णु रूप धारण कर लेता है, ब्रह्मा का भी रूप धारण कर लेता है, शिव जी का भी रूप धारण कर लेता है, और साधक जन जो साधना करते हैं ओम नाम के जापते किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को शिव रूप, वो असमंजस में पड़े रह जाते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये रजगुण तमगुण सतगुण यही है ये भगवान ओम नाम के जाप से जो धमे दिखाई देते हैं। ऐसे ये नबी तक सारी बात बिगाड़ रखी थी। तो अब ये क्या कहते हैं, जब विष्णु पुराण स्टार्ट होती है ये उस काल के बारे में जानकारी दे रहा है, ये स्पष्ट करता है। देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके अनुवादक हैं श्री मुनि लाल गुप्त, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 2 के ये प्रश्न नंबर 4 पर श्री विष्णु पुराण अध्याय नंबर 2 इसके मंत्र नंबर 15 में, श्लोक नंबर 15 में, हे द्विज परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, हे द्विज परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त इसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। अब ये अनुवाद करता और ये इसके वक्ता भी अनभिज्ञ थे, अज्ञानी थे, इन्होंने कोशिश की है डिफाइन कुछ करने की पर नहीं कर पाए। यहां हे द्विज ये परब्रह्म कह है, परब्रह्म कह है इस काल में विष्णु ने, ये विष्णु रूप में दर्शन देते। यहां देखिएगा अध्याय नंबर 2 ही चल रहा है और इसका मंत्र नंबर 27 में, 15 आपने पढ़ा 27 पढ़ा, हे मैत्रेय प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने और पुरुष के इस काल के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है, विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। अब दुर्गा के साथ रहता है तब तो ये विष्णु रूप ब्रह्मा रूप या शिव रूप धारण करता है, और दुर्गा को पार्वती, ब्रह्मा के साथ सावित्री रूप में, विष्णु के साथ लक्ष्मी रूप में, शंकर के साथ पार्वती रूप में रखता है। तो तब तो ये इन रूपों में रहता है, विष्णु रूप लक्ष्मी के साथ विष्णु रूप रहता है, और जब दुर्गा को छोड़ देता है तो ये अपने किस्म ब्रह्मांड में जाकर के अपने वास्तविक काल रूप में विराजमान हो जाता है। यहां लिखा है कि मैत्रेय प्रलय काल में प्रधान यानी प्रकृति के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के इस काल के दुर्गा से पृथक स्थित हो जाने पर ये किस्म ब्रह्मांड में चला जाता है, भगवान विष्णु का काल रूप परिवर्त होता है। और यहां इसी के बारे में जिक्र है ये कि हे द्विज परब्रह्म यानी इस काल का, विष्णु कहो चाहे काल, महाविष्णु कहो चाहे काल कहो, ब्रह्म है ये, परब्रह्म गलत लिखा है। हे द्विज, उस परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, भगवान जैसा है, परमात्मा जैसा है, और अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, साकार और निराकार जो ना दिखता और किसी रूप में आ जाता है, और परंतु तथा काल उसका परम रूप है। प्रथम पुरतो उसका भगवान जैसा है, यानी फर्स्ट इंप्रेशन तो इसका ऐसा दिखा है, फर्स्ट इंप्रेशन तो देखे भाई भगवान ने बड़ी सुविधा दे रखी है, बड़े देखो झरने बह रहे हैं, कि तो बाग बगीचे खड़े हैं, है? और बड़ी सुंदर हवा चल रही है, नीचे जल है, पानी मीठा है, तो यू देखा तो यू भगवान ने पड़ा है, परमात्मा दिखे। और जब यू हमारी दुर्गति कर रहा, घिसका डी किसी का बेटा मार दिया, किसी बेटी मार दी, कैंसर होगी किसी को, कुछ दुख, कहीं ओले पड़ गए, सिर फूट गए, फलट मर खत्म हो गए, नो देखा तो यू इसका असली रूप तो यू है, ये काल है। तो यहां बताया है कि जैसे कसाई बकरे पालते हैं, उन बकरों को वो सुविधा देता तो लगा है ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन उनकी इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि श्याम ने तीन चारा निकाल ले गया, एक कड़च कर दिए। तो अभी तक हमारी सती थी, हमारी बुद्धि यहां सेट थी, हमें पता ही नहीं था हम करें तो करें क्या, कहां जाऊं। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में, पुण्यात्माओं ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये कोई बालकों के लिखे हुए या संगी और बदनी और इन फिल्मी कलाकारों के बनाए हुए गाने नहीं है, ये बहुत ही अच्छा विधान प्रभु का दिया। इसमें एक एक शब्द का बहुत अलग से विश्लेषण होता है, बहुत महत्व गुड़ रहस्य है। उत्तम पुरुष है तो अन्य है, परमात्मा इति उधारते, वास्तविक भगवान श्रेष्ठ प्रभु तो ऊपर वाले सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और ही है, जिसको परमात्मा कहते हैं। परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने आत्मा, अच्छी आत्मा कहते हैं, जो उत्तिष्ट आत्मा है वास्तव में, जिसको परमात्मा कह सकते हैं। अब कहने तो परमात्मा हम इसने भी कहे हैं, लेकिन इसको परमात्मा कह जरूर है, पर गुण तक होना परमात्मा वाले, परमात्मा वाले श्रेष्ठ आत्मा, नेक आत्मा, सिटी तक भी ना मारे, केवल सुख दे दुख ना दे, उसको परमात्मा कहती। तो वो सतलोक में सतपुरुष है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी परमात्मा। अपने आत्मा इससे भी एक और बात समझ में आओगी, अपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में क्या व्याख्या की है, कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो, और इसकी तीनों गुण रूप शाखा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी अवयवों को, सभी पार्ट्स ऑफ द टेरी के जो बता देगा भिन्न भिन्न के, जड़ कौन भगवान है, तना किसे कहते हैं, और डार किसे कहते हैं, और शाखा किसे कहते हैं, और पत्ते क्या है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ये बताया है कि कोई तो ऊपर को पैर करके नीचे को सिर करके साधना करता है, कोई अन्य देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई केवल अहिंसावादी ही है, यानी अपनी अपनी साधनाएं वो ऐसे कर रहे हैं, और प्रत्येक साधक अपनी साधना को पाप नाशक जानता है, यानी जो भी कोई क्रिया कर रहा है वो ने सोचा या बढ़िया है, मुझे सुख देगी, अगर उसको ये पता हो ये सुख नहीं देगी, पाप नाशक नहीं है, अच्छी नहीं है, तो तुरंत त्याग दे वो, तो वो अपनी अपनी साधनाओं को वो अपनी अच्छी मानकर कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की विस्तृत जानकारी चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी का है, कि इस तरह की विस्तृत जानकारी उस सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ओह सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। सचिदानंद घन ब्रह्म मुखे शब्द लिखा ब्रह्म ने मुखे का अर्थ होता है उस सचिदानंद घन ब्रह्म के मुखारविंद से, उसके अपने मुख से बोली गई वाणी में वो विस्तार से कही गई है। और उस ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है, गीता जी 10 नंबर 4 के श्लोक नंबर फिर 34 में कहा कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो तत्व ज्ञान दिया है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे। फिर जैसे वो बतावे ऐसे कर। और वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा, 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में उसका जानकारी दे दी, पहचान बता दी कि जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को सब अवयवों के साथ साथ भिन्न भिन्न बतावेगा वो तत्वदर्शी संत है। गुणात्माओं, ये एक ऐसा विद्यालय है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके पढ़े हुए बच्चे मोक्ष प्राप्त करेंगे, सतलोक चले जाएंगे। इसलिए ये दास एक टीचर बनाया परमात्मा ने, और टीचर का प्रथम कर्तव्य होता है कि स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को सिलेबस से ही जानकारी दे, मनमुखी बाहर की कोई कथा ना सुनावे। अभी तक हमारे को सिलेबस का नाम लेकर के आउट ऑफ सिलेबस स्टडी कराई गई है, इसलिए आज तक हम ये नहीं जान पाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सच्ची थी क्या है। ये जन्मते हैं, इनको हम अजरो अमर कहा करते थे, इनका इतिहास, इनकी जीवनी बताती है कि तो नासवान है, इनके माता पिता भी है, हमें बताया गया था इनके कोई माता पिता नहीं है। तो इसे सिद्ध है कि हमारे जितने भी पूर्वज थे इन अनाड़ी अज्ञानी गुरुओं ने, तो अब ये शीघ्र ही बहुत विस्तार में हो जाएगा अपना ये मार्ग, और सभी को सुख होगा इसी मार्ग से, ये सब हमारे जो विकार दूर होंगे, माया जोड़न की होड़ जो लगी हुई है जिसके कारण अदंदे हो लिए हम आगा पीछा कुछ नहीं देख रहे, इससे वो शांत होगा एकदम, जैसे आग के ऊपर पानी गिर जाता है। इस ज्ञान से पूरे विश्व में इतनी शांति बन जाएगी, और इस ज्ञान के बिना और कोई विकल्प ही नहीं है। इसलिए इस दास का उद्देश्य है कि आपको इतना रंग दूं कि चाहे आपके सामने कोई आके खड़ा हो जाए, आप इस ज्ञान में मारने उससे हार नहीं मान सकते, उसको झुका के छोड़ोगे वो मानो चाहे ना मानो, लेकिन कुछ दिन के बाद उसको मानना भी पड़ेगा।

0: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6667 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जा फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

पुलिस की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूं ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी? हमारे मुल्क में क्यों घुसाया? चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: कैलगरी इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक MN

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेन ले तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

1125 11 11 एशिया पैसिफिक इमिग्रेशन दे मनिंदर सिंह तिलोहरा दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 ट्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेन ले तुसी पॉल से खोजी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 स्थाई एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डीजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुन दे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नूं पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, South East Calgary, near

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दी सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो। ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करा दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 to 8 तक ते शाम 5 to 6 बजे तक रिले किते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी ले कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-4 या विजिट करो www

हम गुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़

ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ

0: जग दुतर तरिया जन नानक सतगुर मेल हर। वाहिगुरु।
1: श्लोक महला पहला। सच्चे त्रिखंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे त्रिलो सच्चे आकाश।

ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੂਡ ਯਾਰ ਮੌਕਾ ਲਿਆ ਤੋਂ ਜਗ ਚੱਲ ਯਾਰ।

0: ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ।
1: ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ

है। हाउ मैं कर्म कमाए, हाउ मैं ही बंदना फिर जो ने पाए। हाउ मैं कितों पुजै कित संज में जाए। हाउ मैं एहो हुक्म है कै किरत फिराहे। हाउ मैं दीर्घ रोग है दारू पीसमाहे। कृपा करे जे अपनी तां गुड़का शब्द कमाए। नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए। पौड़ी सिंह की संतोखई जिन सचो सच ते आयो निमंदे पैना रखे हो।

0: चुके तक तक हरजन हर हर होया नानक हर के।
1: श्लोक पहला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तट्टा मेघा खेता दीपा लोआ मंडला खंडा बरभंडा खंड जिस तुप जा खानी सित जा सो मित जाने नानक आसरा मेरा जनता लाल जन तो पाए कै संभाले सबना जन करता करना किया चिंता पे करणीता सो करता चिंता करे जिन्हें पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दिवाण पग नानक सचे ना बिन क्या टिका क्या तक महला पहला।
0: लख ने किया चंगियां लख पुन्ना प्रमाण लख तप पुर तीर्थां सहजोग बेबाण लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखे आयावन जान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तुम।

सतगुरु एक पेंड जाए चल सतगुरु कोट पेंड आगे हो लेत है चरण शरण गुरु एक पेंड जाए चल सतगुरु को

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ।

0: आप जड़ाएं दे हाँ ताड़ी का नीच जात होर उत्तन जात सदाएं दे तेन मंगाज तुझे ते आएं दे
1: थोड़ी भगत रे मन भाव दे दर सोन कीरत गाव दे नान कर्मा बाहरे दर टोना लैणी ताव दे इक मोलना भोजन प्राण होदा ब।

ਕੂੜਾ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਖ ਧਿਆਈ।

हाँ बलहारी सतगुर चरणा, हाँ बलहारी सतगुर चरणा, धन सवेला जत दर्शन करना, धन सवेला।

Hey, good morning.

जन पौ निवार आन पद दीना शब्द मात्र ते उतार तरे कवि काल

ਚਾਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੀਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੈ ਬੈਠਾਇਆ ਰਹਾ।

0: मन जपे दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो तारन तरन खिन मात्र जाको दृष्ट धार है शब्द रिद विचार है काम क्रोध खोवे जियो जीवन सबन दाता अगम ज्ञान बख्याता अहनस ध्यान तावे पलक ना सोवे जियो जाको देखत दृढ़ जावे नाम सो निदान पावे गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल धोवे जियो सतगुरु नाम एक लिव मन जपे दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो संसार अगम सागर तुल्हा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण पगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत ही आई जिन जन के तिनको पदवी उच्च पही तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अब लोक्या ब्रह्म परम सब छुटकिया दिव दृष्ट कारण करन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारण तरन
1: गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावे गुर कर सच विचार गुरु करे मन मेरे गुर कर शब्द सुपुन अगन कटे सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कब नल कह जिन गुरु ना देखियो ना कियो ते कथ संसार मह जगत उदारन नव निदान भगते पवतारन अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारन सह त्रोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन दे

परम पै फूले सुत दारा सेओ प्रीत लग। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राख।

दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए हो सिफत खसामी नूर अरसो कुरसो चटी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठियां सो ही है सबना दावे सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सो ही है सबना दावे सतनाम

छोटी काल गही रहा दरमीत पूत रथ संपत तन पूरन सब मही और सगल मिथ्या ए जाना भजन राम को सही फिरत।

नानक कहत मिलन की बरिया।

0: जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला नामा मन की मन ही माहे रही, ना हर भजे ना तीर्थ सीवे, चोटी काल गही।
1: दया करो बसो।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माय सतगुरु में पाया सतगुरता पाया सहज सिद्धि मन मजिया बधाइया राग रतन परवार भरिया शब्द गावड़े आया शब्दों तो गावो।

सदा सिफत सलाहा तेरे नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते सचा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जन भक्ता सब गवाइया शांत सुख मन आए।

सचना मेरा दारो वजे पंच शब्द तित कर सुबह गए कला दित करता पंच दूत तुद वस कीते काल कंठ कुमार या तोर कर्म पाया तुद जन को से नाम हर के लागे कह नानक ते सुखो अदित करे नहदवा।

तेरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन भए सर से पूरे गुर के जाने सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आपन फिर वंत नार गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे। बोल जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती समरका गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जस डिठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा प्यारिया सोहा साहिब जादिया चालिया मुकतिया हठिया जापिया तापिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघड़िया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चर खड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारें दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवन का सदका सर्व सुख होवा जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचे आ रहा इत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु।

दान बबेक दान वसाह दान प्रसादान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा दा मन नीमा मत उची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नू विसोड़िया गया है फुल दर्शन दीदार ते सेवा संभार दा दान खालसा जी नू बख्शो सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ओह अबनासी पुरख है सब मह रहया समाए सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम ऐसे दीन दयाल सतगुरु चौथे पातशाह धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज अज दे दिन श्री गोंदवाल साहिब जी विखे ज्योति ज्योत समाए तिन्हां सतगुरां दा ज्योति ज्योत समाउण दा गुरपुरब बेअंत संगतां सच खंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे बड़ी श्रद्धा भावना सत्कार नाल मना रहियां हन जथा सकत पिटावां हाजर कर रहियां हन सतगुरु जीओ सरबत साध संगत दियां हाजरियां तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनियां अपने दरों घरों सिक्की सिदक भरोसा नाम दान बख्शना सब भावनावां पूरियां करनियां हे नमानियां दे मान नतानियां दे तान नियोटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर सबद चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाह प्रसाद भेटा किया गया है तिन्हां दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवै प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवै नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
सूरज किरण मिले।

दयाल कृपा करता सही करता ऐसी सौ सेवक जिस सौ सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म मनाए सी हुक्म मनया हुए प्रमाण था कसमे का मैल पाई सी कसमे पावे सो करे मन हो चिंजा सो फल पाई सी तांतर कह पैदा जाई सी।

0: गुरु नानक गुरमुख हृदय शुद्ध है, हर भगत हर लीजे हर लीजे।
1: श्लोक महला पहला, गुरु ब्राह्मण को करलावो को ब्रतर न जाय, धोती टिका तज माली धाल मलेशा खाई, अंतर पूजा पड़ेक ते बा संजम तुरका पाई, छोटी ले पाखंडा नाम ले जाय। तरंदा महला पहला,
0: मानस खाने करन आज शुरीब गायन तन गलताग, तिन घर ब्राह्मण।

0: ताड़ सताड़े।
1: श्लोक महला पहला। जे मोहा का कर्म है कर्मे पितृ दे अगै वसियाणी है पितृ चोर करे वडी हद लाल के मुसीए करे नानक कैसो मिले जे कटे काले दे महला पहला।
0: ज्यों ज्यों रुसर नामणिया बेमारो आर झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए कुआर। सोचे ना कि बहन जे पिंडा तोए सोचे से नानका जन मन वसया सोई पौड़ी तुर फला।

0: जाते वर पूजया तन हर पूज करावा।
1: श्लोक महला पहला।

0: जिसकी तृष्णा भूख सबे उतरे, जो हर नाम ते आवे, जो हर हर नाम ते आए दे, तिन जम नेड़ न आवे, जन नानक को हर कृपा कर, नित जपे हर नाम करावे।
1: श्लोक महला दूजा, एक नहीं आशकी तुझे लगे जाए, नानक आशकांडिये सदीरे समाए, चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए, आश क्यों ना आखिए जिलिखे वरते सोई। महला दूजा,
0: सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जाए, नानक दोवे कूड़िया थाए न गाए, पाए पोड़ जित से सुख पाई है, सो साहेब सदा संभाली है जित कीता पाए अपना, सा काल

ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਹੈ।

ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਉਂ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।

वस्तु अंतर वसम आवे दूजी होवे पास, साहिब सेती हुक्म न चले कही बने अरदास। कूड़ कमाणे कूड़ होवे नानक सिफत।

गुरु रामदास हर बह गयो, हर बंस जगत जग संचरयो, सो कवन कहे श्री गुरमयो। ऐसे दीन दयाल सतगुरु, सोडी सुल्तान पिता चौथे पातशाह, धन धन।

ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहिं जेहे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रां साह साहन गणिजै त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत तो सर्वनाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत देवपुरी मह गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुरु तह बैठायो रहस कियो सुर देव तुहे जस जय जय जंप है असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंप है कटि सो पाप तिज नरोके गुरु रामदास जिन पायो शत्र सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जुन कौ दे आयो सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया एक एक वखाणिया आत्म पसारा करन हारा प्रभ बिना नहीं जानिया आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक से जाने जिन्नी हर रस पिया सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों करसों चटी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा दशाह जिस पास बैठिया सोहिया
जिस पास बैठिया सोहिया

محلہ

ना हर भजे न तीर्थ सेवे। छोटी काल गही मन की मन ही माहे रही। नहर भजे न तीर्थ सेवे। चोटी काल गही संपत तन पूरन सब मही। अवर सगल मिथ्या ये जान भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुग हारे मानस देह लही।

नानक कहत मिलन की बरिया। सिमरत

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैन लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी ले पॉल सेखू जी नो 403-829-5000 जा फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11-2316-27 Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिवें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

धन गुरु रामदास पातशाह सतगुरां दे बेले अमृतसर दे विच एक बड़ा ही गरीब

सतगुरु 40 पैसे। भई इंज कर, तू 40 पैसे मैनू दे दे। अज सतगुरां ने 40 पैसे लै ले। चंगा वे सोमिया, असी चल दे। इधरों मां उड़ीक कर रही है, हुणे सोमा आएगा ते कुछ खाण वास्ते लियावांगी। घर दे विच महीने महीने दा राशन आ जाना। अज खादी है, कल दा कोई भी फिक्र नहीं। सतसंगियो, ये अमीरां दी गल है, जेड़ी गरीबां दी गल है। जेड़ा दिन भर विच कमाना है, उही शाम नूं खाना है। आ जदों सोमा घर आया, मां ने पुछया, सोमिया किन्ने पैसे वटे, जल्दी दे, तेरे वास्ते कुछ खाण वास्ते लिया। मां, अज मेरी शाबी ते धन गुरु रामदास पातशाह आए सन, सारी वटक मैं सतगुरां नूं दे दित्ती है। मां ने बाहां विच लिया, आखिया, पुत्र तू बड़े भागां वाला है। ये सतजुगी मां है, इस मां ते गुरु दी कृपा है। कोई हुंदी कलजुगी मां ते मूंह ते चंडा ला दी, घर विच खाण नू आटा नहीं, ते तू सारे पैसे गुरुद्वारे सुट आया। नहीं बई, इस मां ते गुरु दी कृपा है। पुत्र, तेरे चंगे भाग ने। अज घर दे विच जो भी रुखा मिसा है, खा के गुजारा कीता है, रज के भोजन नहीं छकिया। दूजे दिन सोमा टुरन लगा, ते मां समझा रही है, पुत्र जे अज भी सतगुरु आण, ते सारी बटक सतगुरां नूं दे देवी। आ दूजे दिन सोमा गया, सारा दिन कुंगणियां वेचियां, शाम पई ते सतगुरु फिर आ गए। क्यों बई, अज किन्ने पैसे वटे ने, सतगुरु अज मैं 30 पैसे वटे ने, सतगुरां दे हाथ ते रखे। शाम पई सोमा घर आया, मां अज फिर सतगुरु आए सन, मैं सारी बटक सतगुरां नूं दे दित्ती है। ते सतसंगियो, सच जाणो, अज घर दे विच इन्ना भी आटा नहीं कि एक फुलका बन सके। मां समझा रही है, पुत्र जे ना प्रशादा खाण नूं होवे, ते पानी रज के पी लईदा है। आ गरीबी दे विच कई बार इहो जे दिन भी आ जाते। अज मां ते पुत्र ने प्रशादा नहीं छकिया, पानी दे नाल पेट भर के सुते ने। बेशक पेट तो भुखे ने, पर अज जिनी खुशी कदे बिना हुई, गुरु दे प्यार विच भुखे ने। तीजे दिन सोमा घरों टुरिया, ते मां ने समझाया, पुत्र गुरु पता नहीं केड़े गली खुश है, मन विच मैल ना लियाई, जे अज भी सतगुरु आण, सारी बटक दे देवी, नहीं ते आप देण चला जाए। आ तीजा दिन होया, सोमा सारा दिन कुंगणियां वेचियां, शाम पई ते सतगुरु आए नहीं। मोढ़े ते रखी बोरी, ते सोमा आप अंदर चला गया, ते सतगुरु परिक्रमा विच बैठे ने। की तक रहे ने, ओ सामने एक गरीब बच्चा, फटे हुए गल दे विच कपड़े, मोढ़े ते बोरी रख के नसिया आ रहा है। आके सतगुरां दे चरण पकड़ ले, सतगुरु अज तुसी क्यों ने?

सतगुरु अज मैं 15 पैसे वटे, जेब विचों कढ़े पैसे सतगुरां दे चरणां विच रख दिंदे। सतगुरु आखण लगे सोमिया एक गल समझ आ, तैनू दिनों दिन घाटा क्यों पैंदा जांदा है। पहले दिन तेरे कोल आए तू 40 पैसे वटे सन, दूजे दिन 30 पैसे ते अज तू 15 पैसे वटे। तेरे काम दे विच क्यों नहीं बरकतां पैंदियां, ते ज्यों जे सतगुरु बोल रहे ने अखां विच हंझू भरे होए ने। सतगुरु मैं बड़ा ही गरीब हाँ, जिन्ने पैसे हुंदे ने तुहानूं दे जांदा, पहले दिन दे 40 पैसे भी तुहानूं दे दिते, ते अज आखरी 15 पैसे भी तुहानूं दे जाने ने, ते सतगुरु मेरे कोल हुण पैसे मुक गए ने। हुण कल तो मैं शाबी लाण वास्ते नहीं आना, मैं बड़ा ही गरीब हाँ। सतगुरु रहमत दे घर विच आए, सोमिया क्यों झूठ बोलदा है, तू ते बड़ा ही अमीर है। नहीं सतगुरु मैं गरीब हाँ। नहीं बई तू अमीर है। जदों सतगुरां ने 2-3 वार आखिया, हंझू भर के आखण लगा सतगुरु 3 दिन हो गए ने, मैं ते मेरी मां ने प्रशादा भी नहीं छकिया। पौन वास्ते चंगा कपड़ा नहीं, जेब विच पैसे नहीं, 3 दिन तो मां भी भुखी बैठी है, केड़ी मेरी अमीरी है। सतगुरु तुसी मेरा गरीब दा हाल की जानो। जदों इन्नी गल आखी सतगुरु उठ के खलो गए, बाहां विच ले लिया सिर ते रखिया हाथ, सोमिया तेरी हालत मेरे तो ज्यादा कौन जान सकता है। अज तो बाद तेरी गरीबी कटी गई, की आखन लगे सोमा शाह, शाहां दा शाह बेपरवाह। आ कुछ ही महीने बीते ते की बख्शियां होईयां, अमृतसर दा सब तो अमीर बंदा सोमा, जिसनू हर कोई शाह जी करके बुलांदा। हर पासे सोमे शाह दियां गल्लां हुंदियां, बड़े धन वाला है, ते जिसदा नाम इतिहास विच भी शाह जी करके लिखिया जांदा, ते देखो गुरु दी किरपा अज भी सोमे शाह दे परिवार दे मैंबर जिहड़े शहरां विच वसदे ने, ते लोकी उहनां नूं अज भी शाह जी करके बुलांदे ने। ऐ सतगुरु जिन्हां दा कोई नहीं उहनां दा तू हो जांदा है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तों लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जा फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लैण लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता, तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्तिविधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी ले साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 28 पुजा होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसीं रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल का पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह के मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर की जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
3: कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हॉल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हॉल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहता है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लेनी चाहते हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, Northeast Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144-3670 63rd Avenue North East कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी उर्दू मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
3: कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
4: एक महावीर जैन हुए हैं जैन धर्म के अंदर, उनकी जीवनी से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है जो दास और परमात्मा कबीर जी आपको समझाना चाहते हैं। रस्यव देव जी ये एक बहुत नेक राजा थे, सतयुग के अंदर बहुत ही अच्छे राजा थे, परमात्मा को चाहने वाले थे और वेदों में कबीर देव की महिमा बहुत लिखी है। तो जो ऋषि लोग थे, जो रस्यव देव जी के गुरु ब्राह्मण थे, उनसे ये प्रश्न किया करते थे रस्यव देव जी कि वेदों में आप बताते हो कि कवि नाम का कोई प्रभु है, कबीर कबीर देव है, तो अनुवादकर्ता कर देते थे वो कवि है, कवि है, तो उसका नाम चलो कवि है क्योंकि वो परमात्मा अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से दोहों शब्दावलियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार प्रत्येक बार करने आता है, इसलिए उसको कवि कहते हैं। हम उसको कबीर देव, वेदों में लिखा कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, वो कवि ही मान लेते हैं। तो वहां लिखा है परमेश्वर की वाणी में गरीबदास जी ने कहा है कि रस्यब देव के आईया कभी नामे करतार है, उस कभी नाम ते आगे वे। वैसे तो कबीर देव का अर्थ कवि साहब, अगर हम वैसे व्याकरण अनुसार करें तो कवि साहब, कवि साहब माने वो जो परमात्मा उसका नाम ही कवि साहब है। कवि हम उसको कबीर साहब कहने लगे, कबीर सिर्फ उसमें अंतर है, जैसे भाषाओं में अंतर होता है, तो इस प्रकार वो कबीर परमात्मा। तो रस्यव देव जी के वही परम अक्षर ब्रह्म उस प्यारी आत्मा को समझाने के लिए कभी नाम से आए कभी, और कहने लगे मैं वो परमात्मा हूं जो वेदों में वर्णित है कभी, क्योंकि वो अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने रस्यव देव जी को भ्रमित करके अनुवाद गलत करके उसको कभी सिद्ध करा था। वैसे वो कबीर देव है, उसको कबीर देव ही बोलना चाहिए हमने, कबीर देव। जैसे यजुर यजु है, यजु कहने से क्या लाभ, यजुर वेद साथ बोलना दत जवाबात, तो वो कबीर देव है, कबीर देव कबीर साहब है। तो परमात्मा आए, रस्यव देव जी को बहुत सुंदर ज्ञान सुनाया, रस्यव देव जी बहुत प्रभावित हुए और इतना बैराग हो गया कि राज्य भी त्याग दिया, अपने पुत्रों को सबको, भरत आदि को सबको राज्य दे दिया। लेकिन उसी समय ये ब्राह्मण लोग ये गणे परमात्मा एक एक ही ऋषि रूप में आते हैं मिलते हैं, तो बाद में ऋषव देव जी को उन नकली काल प्रेरित गुरुओं ने ब्राह्मणों ने भ्रमित कर दिया कि वो झूठा है, कपटी है, वो गलत ज्ञान बताता है, ब्रह्म से ऊपर भगवान नहीं, ब्रह्म लोग तो ऊपर कोई स्थान नहीं। अब ऋषव देव जी ने ओम नाम का जाप और साथ में हठ योग 1000 वर्ष तक किया, 1000 वर्ष तक तप किया, उसके बाद निराहार रहकर कुछ नहीं खाया 1000 वर्ष तक, इतने तगड़े शरीर होते थे पहले सतयुग। तो जब उन्होंने प्रथम बार अपनी उपासना पूर्ण की और वो व्रत खोलिया, तो सबसे पहले धर्म देशना बोल रहे हैं दीक्षा को, अपने पौत्र भरत के पुत्र को, अपने बेटे के बेटे को यानी पोते को, मारीचि नाम था उसका, सबसे पहले रस्यव देव जी ने उस मारीचि को नाम दिया। और रस्यव देव जी केवल ओम मंत्र ही जाप करते थे और साथ में हठ योग भी करते थे, जो खिचड़ी ज्ञान ब्रह्मान जी के द्वारा काल प्रेरणा से जो ग्रहण किया हुआ है, इसके लिए थोड़ा सहयोग लेते हैं। रस्यव देव जी ने अपने पौत्र यानी पोते मारीचि को प्रथम मंत्र दिया, पहला चेला वो ही मुंडिया, और वो मारीचि वाली आत्मा आगे चलकर महावीर जैन कहलाए। एक प्रमाण जैन धर्म का, एक जैन संस्कृति कोष 3 भागों में है और इनके इनको वो फाइनल मानते हैं, जैसे हम गीता जी वेदों को मानते हैं, ऐसे इन तीनों पार्ट को, 3 पार्ट हैं ये, तो इनको ये अंतिम मानते हैं। और प्रथम भाग में आपको दिखाते हैं, देखिए जैन संस्कृति कोष, जैन इतिहास प्रथम भाग, प्रोफेसर है भागचंद्र जैन भास्कर, ये कहां से प्रकाशित है, जैन संस्कृति कोष, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातत्व प्रथम खंड, लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, समंती प्राच्य शोध संस्थान नागपुर, कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी। और ये कहां से प्रकाशित है, कहां से छपा है, जैन इतिहास, जैन संस्कृति कोष, जैन इतिहास संस्कृति कला पुरातत्व प्रथम खंड, लेखक प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, प्रकाशक हैं डॉक्टर प्रेम शंकर द्विवेदी, मानद निदेशक कला एवं धर्म शोध संस्थान B33A1 न्यू साकेत कॉलोनी BHU वाराणसी फोन नंबर इतना। और भागचंद्र जैन दूसरा है प्रकाशक, भागचंद्र जैन भास्कर ये वही है, लेखक भी है। और ये कहां से प्रकाशित है, ये निश्चय प्रकाश, ये प्राप्ति स्थान। अब ये है, ये किसने, ये पुण्य स्वर्गीय पुण्य पूज्य पिता श्री गोरे लाल जी जैन एमएम मातुश्री पूज्या तुलसा देवी जैन की पुण्य समर्थि में सादर समर्पित है। ये भाग सुंदर जैन के माता पिता की तरफ से को समर्पित है। इसके प्रश्न नंबर 175 पर ऋषभ देव के पौत्र मारीची भरत के पुत्र, यानी भरत जो इसका पुत्र था, ऋषभ देव के पौत्र मारीची अर्थात भरत के पुत्र, मारीची भरत का पुत्र था जो ऋषभ देव का पुत्र था, को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है, यानी मारीची को। और यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना, यानी महावीर जैन बना, यही आत्मा आगे चलकर 176 पृष्ठ पे जैन संस्कृति कोष, जैन इतिहास, कला और पुरातत्व, तीर्थकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं, तीर्थकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभि राज के पुत्र थे, उनकी माता मरु देवी थी, वे इक्ष्वाकु वंशी नाभि राज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभि राज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया, दो पत्नियां थी। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को जन्म दिया और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया, यानी ऋषभ देव जी के 100 पुत्र और दो पुत्रियां थी। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभ देव एक वर्ष तक निराहार रहे, यानी कुछ नहीं खाया। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रियांश कुमार ने इक्षु रस देकर, ईख का रस, गन्ने का रस पिलाकर उनकी इस निराहार वृत्ति को यानी उस व्रत को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि, फिर 1000 वर्ष तक फिर तपस्या की उसने। ऋषभ देव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया, या कैवल्य मुक्ति बोलते हैं, कैवल्य, अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना प्रारंभ की, नाम देना शुरू कर दिया अपने आप 1000 वर्ष तक तप करके, और उसमें जितना उसने ज्ञान हुआ, जो भी प्राप्ति हुई, उसके आधार से धर्म देशना यानी नाम देना शुरू कर दिया। प्रथम धर्म देशना, प्रथम नाम भरत के पुत्र मारीची को दी, यानी उसको दीक्षा दी अपने पौत्र को, जो बाद में 24 में तीर्थ कर महावीर बने, ये महावीर जैन बना। अब यहां से हमने इतना ही लेना है बस। अब पुण्यात्माओं, ऋषभ देव जी ओम मंत्र का जाप करते थे और ये भी इसमें ओम को आगे चलकर अणोम करने लगे, अणोम अणोम अणोम नहीं, ओम है इसने सीधा ओम बोल दे, अलग से इसकी प्रक्रिया आने वालों ने अन्य तीर्थकरों ने कर दी। प्रथम तीर्थकर जो महान आत्मा ऋषभ देव जी थे, उन्होंने केवल ओम नाम का जाप किया। इसको ये करते कैसे थे, ओम ऐसे करते रहते थे, तो बाद वालों ने उनको अणोम कहने लगे, अणोम, लेकिन ये ओम है। तो ऋषभ देव जी ओम नाम का जाप करते थे और उन्होंने सातवां अठ योग भी करते थे, जो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण होता है, जो वेदों अनुसार और गीता अनुसार नहीं है, वो मनमाना आचरण होता है। जो वेदों और गीता से ली गई साधना है वो शास्त्र अनुकूल साधना है, लेकिन वो कितनी साधना कहां तक की है उतना ही लाभ मिलता है उसको। तो वही मंत्र, वही साधना, वही विधि ऋषभ देव जी ने अपने पौत्र अपने पोते मारीची को दी, जो भरत का पुत्र था, और मारीची के जीव को इस साधना के करने से कितना दुख और कितना सुख हुआ ये वर्णन करते हैं। ये देखिएगा, ये एक पुस्तक है, इन्हीं बड़े जैन संस्कृति कोष से ही निष्कर्ष निकालकर लिखा गया है। आओ जैन धर्म को जाने, धर्म मंच प्रश्नोत्तरमाला, कौन बनेगा सबसे ज्ञानी, ये है ओम अरिहंताम अणोम अणोमो, ये मंत्र मंत्र यज्ञ, प्रवण चंद्र जैन एम ए शास्त्री, इन्होंने इसको लिखा है। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक है प्रवीण चंद्र जैन एम ए शास्त्री, जम्बू द्वीप हस्तनापुर, प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बू द्वीप हस्तनापुर मेरठ उत्तर प्रदेश, ये इनके प्रकाशक हैं, और ये मुद्रित है दिनेंद्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स मेरठ, फोन नंबर इतना। ऋषभ देव जी के कोई गुरु नहीं थे, वो अपने आप ही अपनी साधना किया करते थे। हम 293 पर चलते हैं, वो जो मारीची वाले जीव ने जो साधना ऋषभ देव जी से लेकर की थी, ओम नाम का जाप और अन्य साधना जो तप किया, उससे उसको क्या परिणाम मिला, 293 पृष्ठ पे। आओ जैन धर्म को जाने, विशेष प्रकरण, श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम हैं, एक वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एमएम, वर्धमान। अब 294 पे आओ जैन धर्म को जाने, महावीर भगवान, श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? उत्तर है पूर्वा नामक भील की पर्याय से। प्रश्न, पूर्वा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर, वो पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मदमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील की प्रिया यानी शरीर से कहां गया? उत्तर है कि पहले 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ, फिर स्वर्ग से कहां गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। यानी इस मारीची से पहले का भी इसका एक जीवन बता रखा है। उसके बाद ये ऋषभ देव का पोता मारीची हुआ, महावीर का जीव, फिर वो ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ब्रह्म स्वर्ग को ब्रह्म लोक कहो, ब्रह्म लोक में गया, ऋषभ देव जी से नाम लेकर ओम नाम का जाप करके ये ब्रह्म लोक में गया। ब्रह्म स्वर्ग कहो ब्रह्म लोक कहो, ब्रह्म लोक ब्रह्म स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ, फिर जटिल के शरीर को छोड़कर कहां गया? सौधर्य स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ, फिर स्वर्ग से कहां गया? इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम क्षत्री से अग्निसह नामक पुत्र हुआ, अग्निसह फिर कहां गया? स्वर्ग में गया, फिर स्वर्ग से कहां गया? भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ, अग्निमित्र कहां गया? महेंद्र स्वर्ग में गया, ये इंद्र के लोक में गया, फिर महेंद्र स्वर्ग से कहां गया? ये मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ, फिर भारद्वाज कहां गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर इंद्र के लोक में गया, फिर महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहां गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव होया। ओहो, और अब देखना, ओ मेरे मालिक, कलेजा मुंह को आता है। अब निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहां गया, अब उसके बारे में क्या बताता है? उत्तर है, अनेकों भव धारण किए, जो इस प्रकार है, 1000 वर्ष 1000 आंख के वृक्ष, 1000 बार तो आंख का वृक्ष बना, और 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव यानी केले के, और 3,000 बार चंदन के वृक्ष के शरीर धारण किए, और 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, और 60,000 बार वैश्या के, 60,000 बार वैश्या के भाव, और 5 करोड़ बार शिकारी के शरीर, ओहो यहां फोड़ लिए कर्म, 5 करोड़ बार शिकारी बना, 20 करोड़ बार हाथी के भाव, और 60 करोड़ बार गधे के भाव, 60 करोड़ बार गधा ते कब बना बतेरा हे भगवान, 60 करोड़ बार, ओहो 60 करोड़ बार गधे के शरीर, और 30 करोड़ बार कुत्ते रही खी कसरिया निकलगी कुत्ते के जीव, उतरग एक के कुत्ते का जीवन देख लो कितना दुखदायी होता है, और 30 करोड़ बार कुत्ते का शरीर, 60 करोड़ बार नपुसंग के भाव, और 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी के शरीर भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, और 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, और केवल 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया। अब पुण्य आत्माओं, अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें आकर के यही बताना चाहते हैं कि तुमको परम संत मिला नहीं, सत साधना प्राप्त हुई नहीं, सत्संग तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण से तुम्हारे ये जन्म और मृत्यु के कष्ट समाप्त नहीं हुए। और गीता जी में बताया है कि जो व्यक्ति तत्वदर्शी संत से संबंधित हो जाता है, उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान से फिर वो तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाता है, फिर वो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, जरा मरण यानी बुढ़ापे और मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न। आज आप जी को बताया, शुरुआत की थी कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खानी। ये चारों खानी यानी चार प्रकार से जीवों की जो है उत्पत्ति होती है, अंडरज जेरज उद्बुद शब्दज, यानी अंडे से जेर से जैसे मां के गर्भ

मुसलमानों वाले पुस्तक में लिखा है हजरत मोहम्मद जी की जीवनी में कि बाबा आदम हजरत मोहम्मद ने देखा वो एक बार हंस रहे थे एक बार रो रहे थे। हजरत मोहम्मद ने पूछा उस फरिश्ते से जबराइल से कि ये कौन व्यक्ति है। जबराइल ने बताया कि बाबा आदम है, ये रो और हंस क्यों रहा है कि स्वर्ग के अंदर तो इसकी अच्छी संतान है जो नेक नीति से राह करती वो स्वर्ग में है और जो निकम्मे थे भक्ति करी नहीं मांस मिट्टी खाते थे वो नरक में पीटे जा रहे हैं ब्रांड माटी हो रही है। जब ये नरक की तरफ देखता है तो अपने निकम्मी संतान को दुखी होते हुए देखकर रो रहा है और जब स्वर्ग की तरफ देखता है अच्छी संतान स्वर्ग के अंदर आनंद से रह रही है तब वो खुश होता है। तो पुण्य आत्माओं इस स्वर्ग में भी नो की नो दुर्गति जैसी पृथ्वी पर ऐसे दुख और सुख समांतर चल रहे एक ही स्थान है सतलोक जहां जाने के बाद जीव की फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। अब आपने ऋषभ देव जी से प्राप्त दीक्षा मारिची जी की क्या दुर्गति हुई आपने पढ़ लिया और यही आगे चल के महावीर जैन हुआ वही आत्मा महावीर जैन कहलाई। अब आपने देखा कि 60 करोड़ बार गधा बना और 30 करोड़ बार कुत्ता और केवल 80 लाख बार देवता बना। अब उस देवता ने के चाटे गधा और कुत्ते भी बन गया। इसलिए परमात्मा बताते हैं कि ये काल की भूल भुलैया है। यथार्थ ज्ञान ना प्राप्त होने से जीव की ऐसे ही दुर्गति रहती है। कई पुण्यात्मा जो होते हैं वो अल्पज होते हैं कुछ श्रद्धालु ज्यादा होते हैं वो ये सोचते हैं कि कहते हैं कई बार कि यदि सभी आप वाली साधना कर लेंगे कबीर जी वाली भक्ति कर लेंगे सभी सतलोक चले जाएंगे तो यहाँ पृथ्वी पर कौन रहेगा तो खाली रह जाएगी। पृथ्वी तो एक कैद है कैद एक दुख सथल है और हम पहले वहीं रहते थे सभी तो पड़ी रहेगी खाली ये निरेगरे धक्के खाते अंडे ये और घूम लेगी खाली अपन के लेना इसका ऊपर हम तो अपने सतलोक चले जाएंगे वहां हमारा निज स्थान है। तो ऐसी भ्रमणा पैदा कर रखी है कि यहाँ कौन रहेगा इसने के फूकांगे जरा इसी दुर्गति होने लग रही जीव की एक पल में भरोसा निके हो जा कभी परले हो जा कभी सूखा पड़ जा कि तब भूकंप आकर दुनिया मर जा कि तब साइकिलों आ गया लाखों लोग मर जाते हैं कभी सर्दी सतावे गर्मी सतावे सैकड़ों बीमारियां तो यार यहां रहना के शौक है तो मजबूरी फंस रहे हैं।

0: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह की रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू

0: ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ 403-404-3500 ਯਾਨੀ 403-404-3500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ।
1: ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਸੁਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਸਮਾਧਾਨ ਚਾਹਤੇ ਹੈ? ਕਿਆ ਆਪ ਨਸ਼ਾ, ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਕਲਹ ਔਰ ਜੀਵਨ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਓਂ ਸੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ? ਤੋ ਅਵਸ਼ਯ ਪੜ੍ਹੇਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਤ ਅਨਮੋਲ ਪੁਸਤਕੇ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ, ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਵ ਗੀਤਾ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਯੇ ਸਭੀ ਪੁਸਤਕੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਮਰਾਠੀ ਵ ਅਨਯ ਭਾਸ਼ਾਓਂ ਮੇਂ ਭੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਯੇ ਪੁਸਤਕੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਵਿਧੀ ਔਰ ਮੋਕਸ਼ ਕਾ ਮਾਰਗ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਂ ਸਮਝਾਤੀ ਹੈ। ਲਾਖੋਂ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਕਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਨਾਡਾ ਮੇਂ ਯੇ ਪੁਸਤਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਃਸ਼ੁਲਕ ਮੰਗਵਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਜ ਹੀ ਹਮਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ jagatgururampalji.org ਪਰ ਜਾਏ ਯਾ 3065818061 ਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ।
0: ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ 102.7 FM ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਰੇਡੀਓ ਅਦਾਰਾ 102.7 FM ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।
2: कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
3: यही है आओ जैन धर्म को जाने, ये आओ जैन धर्म को जाने। हम 295 पृष्ठ पर आगे हैं। हमने ये पढ़ लिया 60 करोड़ बार गधे के भाव शरीर, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, 60 करोड़ बार नपुसंख, 20 करोड़ बार क्षत्रिय, 90 लाख बार धोबी और 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव और 60 लाख बार गर्भपात से मृत्यु और 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त किया। केवल 80 लाख बार तो देवता होया और बाकी ऊपर दुर्गति अलग से हुई। उसके बाद फिर कहा गया राजग्रह में स्थावर नामक ब्राह्मण होया, फिर महेंद्र स्वर्ग में गया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ, फिर सातवें नरक में गया। ये सातवें नरक में और सातवें नरक से महावीर भगवान का जीव कहां गया? सिंहगिरी पर, सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ। फिर प्रथम नरक में गया। आगे हम ज्यादा ना देख करके यहां देखते हैं। सहस्रारसुरक से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक का पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। तनंतर उसके बाद वही मारिची वाला जीव 24वें तीर्थकर श्री महावीर भगवान हुए। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? ओ तेरा गजब, 363 पाखंड मत चलाए। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, कहते हैं साच कहो तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो और साच ना पूरा पावते झूठा जगपति आई हो। परमात्मा कहते थे कि मैं सच्ची कहता हूं और मेरी बात पर कोई यकीन विश्वास नहीं करता और ये झूठों के जो गलत साधना बता रहे हैं, ऐसी दुर्गति तुम्हारी हो रही है, उन सब के ऊपर सब विश्वास किए बैठे। अब विचार करो, मारीची वाले जीव ने, महावीर जैन वाले जीव ने मारीची रूप में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी से उपदेश लिया था और ऋषभ देव जी ने क्योंकि और कोई मंत्र था ही नहीं, वेदों अनुसार साधना दी थी। उस ओम नाम के जापते और हठ योग करने से, तप करने से, तो क्या क्या उपलब्धियां हुई अभी आपने पढ़ा और सुना। उसके बाद महावीर नाम से उत्पन्न हुए और उसके बाद महावीर जी का कोई गुरु नहीं था, इन्होंने स्वयं ही प्रेरित होकर के घर त्याग दिया। अपने आप काफी वर्षों तक निराहार रह करके, निवस्त्र रह करके साधना की और उसके बाद इसने 363 पाखंड मत चलाए। पुण्यात्माओं, राजा ऋषभ देव जी से वेदों अनुसार साधना प्राप्त करके इन्होंने कष्ट भी बहुत उठाए, लेकिन 80 लाख बार देवता भी बन गए, क्योंकि पुण्य और पापों का लेखा अलग अलग भोगना पड़ता है। और अब इसने ना तो वेदों अनुसार साधना रखी महावीर के रूप में, और उसने आगे अपने अनुभव से वेदों से हटकर पाखंड मत चला दिए 363, जो वर्तमान के जैनी भाई और ये गुरु लोग उस महावीर जी द्वारा बताए गए पाखंड मत के आधार से साधना कर रहे हैं। इनको तो कुछ भी ना मिल रहा है, स्वर्ग में सपने में भी नहीं जा सकते, ये तो सीधे ही नरक और 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। ये दास का जो उपदेश है अपना बनाया हुआ नहीं है, ये परमात्मा का विधान बताया, और पुण्यात्मा इसको महसूस करें, गहराई से सोचें और इससे पीछा छुटवाएं और परमात्मा की भक्ति करें। इन्होंने स्वयं लिखा कि उन्होंने 363 पाखंड मत चलाए। पाखंड माने व्यर्थ, वेदों अनुसार साधना करने वाले मारीचि जी की भी कितनी दुर्गति हुई, लेकिन कुछ राहत अवश्य साथ मिली। फिर उस राहत ने के चट्ट है गदेर कुत्ते की योनि भोगी, फिर देवता बन गया। तो यहां परमात्मा क्या बताना चाहते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खानी। चार खानी में गधे कुत्ते सुअर की योनियों में धक्के खाते फटकते, चार खानी में भरमते कभू ना लगते पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। सतगुरु यानी सच्चे गुरु के संपर्क में आने से, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके सत साधना करने से ये सारा बाईपास निकाल दिया। ना तो 84 लाख योनियों में जाना, ना गधे कुत्ते सुअर की शरीरों में धारण करना, और इससे बाईपास निकाल करके या तो मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा यदि भक्ति पूरी ना हुई, और साधना पूरी होगी तो हम सतलोक चले जाएंगे। अब क्या बताते हैं, सात समुद्र की मसी करूं, सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। कितनी प्यारी व्याख्या की है कि ऐसा संत मिल जावे, सतगुरु मिल जावे, जो इन सभी दुर्गतियों से, इस प्रकार के सभी कष्टों से, सभी योनियों से बचा दे। उस सत मंत्र के आधार पे कहते उस संत की सात समुद्र की मसी करूं इंक, सातों समुद्रों की इंक बना लूं, स्याही बना लूं, और लेखनी यानी कलम बना लूं सारे वृक्षों की, एक वृक्ष के एक टहनी की कितनी कलम बन जा, ढेर लग जा छोटी छोटी कलम। और कहते हैं पूरी पृथ्वी जितना कागज मेरे पास हो, और यदि ऐसे संत के गुण लिखन लगूं ये सभी समाप्त हो जाए, गुण पूरा ना हो। अब एक गधे का जीवन लिखन लग जाओ, एक दिन में उसकी के दुर्गति होती है, फिर कुत्ते का लिखो, सुअर का लिखो, फिर पुराने का, इतने कष्टों के उन और उनसे परमात्मा ने हमें बचा लिया, यानी सतगुरु के उपदेश ने, सच्चे गुरु जी के सच्चे मंत्र ने हमारे को कितना बाईपास निकाल दिया। कहते गुरु मानुष कर जानते ते नर कई है अंधे, होवे दुखी संसार में फिर अग काल के फंदे। ऐसे संत को यदि आप जी केवल मानो ही समझकर ट्रीट करते हैं तो कहते वो मूर्ख व्यक्ति है। पुण्यात्माओं, परमात्मा परमेश्वर स्वयं आए थे, मनुष्य रूप ही है उनका, लेकिन वो तेजों में शरीर अधिक है, उस तेजों में शरीर को सरल करके अलका तेज पुंज का शरीर बना करके वो एज इट इज प्रगट हुए थे छोटे से शिशु रूप में, धीरे धीरे लीला करते हुए बड़े हुए लीला की। तो ये ज्ञान प्रचार किया करते, सुख यही दिया करते जो आज परमात्मा आप जी को दे रहे हैं, वही कबीर जी इस दास के माध्यम से। तो उस समय हम परमात्मा से इसलिए दूर रहे, उनके संग नहीं जा सके, क्योंकि हम उन अज्ञानी अनाड़ी ऋषियों के द्वारा भ्रमित ज्ञान के आधार से हम परमात्मा को निराकार मानते रहे। इसलिए यदि परमात्मा कबीर जी कहा करते थे हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर गरीबदास खालिक दनी, कबीर जी कह रहे हैं मेरा नाम कबीर, लेकिन ये बातें किसी के गले उतरी नहीं कि परमात्मा तो निराकार होता है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हमने परमेश्वर को परमेश्वर माना नहीं, ओनली एक आदमी मान के और ज्ञानी मान के कि विद्वान है और कुछ सिद्धियां रखता है, इसलिए हम परमात्मा के साथ चिपके रहे, हमको हमने उनको परमात्मा नहीं माना। और कबीर जी कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, होवे दुखी संसार में अगयम के फंदे। तो गुरुदेव को, वो तो भगवान स्वयं आए थे और इस दास को भेज दिया अपना आप जी को समझाने के लिए, अब मुझ दास को भी अपनी उन्होंने पावर दी है मालिक ने ही इस दास को, और वही सब परमात्मा ही कर रहे हैं। कबीर जी की शक्ति ही आप जी का सुख, आप जी को सुख दे रही है और साथ में आप दुखों का निवारण कर रहे हैं और साथ में ये ज्ञान वही बता रहे हैं उन्हीं की वाणी से। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि यदि आपने गुरु जी को परमात्मा के तुल्य नहीं माना तो फिर भी काम कच्चा रह जाएगा, आपकी साधना विफल हो जाएगी। एक नियम है गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंधे। अब गुरु कहो चाहे सतगुरु कहो, क्योंकि सतगुरु इसलिए कहना पड़ा कि नकली गुरु गणे, इसलिए सतगुरु शब्द लगाना पड़ा, और वास्तव में गुरु शब्द पर्याप्त है, जैसे आध्यात्मिक गुरु संत होते हैं, लेकिन वो संत नकली हैं, उनका ज्ञान कंप्लीट है नहीं, जिस कारण से अब सतगुरु शब्द लगा दिया। तो यहां लिखा है कि जो आप जी को सतगुरु मिल गए उनको गुरु कहो चाहे सतगुरु कहो, वो तो प्रत्येक व्याख्या में पूर्ण है, प्रत्येक संज्ञा में, प्रत्येक उपमा में। तो कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, यदि गुरु जी को तुम मानुष मानते हो, सिंपल मैन मानते हो, ते नर कहिए अंध, वो ज्ञानहीन है, ज्ञान नेत्रहीन अंधे हैं, वह दुखी संसार में आग गए फिर काल के फंद, काल के बंधन। अब देखे अपने महावीर जैन की के दुर्गति हुई, कहते ये संकट फेर रहेंगे जब सतगुरु मिल गए, सतगुरु को आपने एज ए गॉड रिस्पेक्ट नहीं किया, कंसीडर नहीं किया। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और ओवे दुखी संसार में आग काल के फंद। जैसे एक गणित का प्रश्न होता है, एक गणित के अंदर एक प्रश्न ब्याज का एक चैप्टर होता है, उसमें सपोज करना होता, मान लीजिए मूलधन 100 रुपए, जबकि वास्तविक मूलधन करोड़ों रुपए में होता है, उस करोड़ों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए सपोज करना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपए, और जब तक हम 100 रुपए मूलधन नहीं मानेंगे, भले ही वो करोड़ों रुपए की तुलना में एक छोटी राशि है, तो हमारा वो प्रश्न हल नहीं हो सकता। इसलिए आप जी ने गुरु जी को, मान लो गुरु जी भगवान, गुरु जी गॉड है हमारे, और फिर उनको जैसे हम परमात्मा के सामने जाते हैं, परमात्मा से जाएंगे हम, जैसे वह भगवान आ जाते हैं, यदि आप ऐसा ही व्यवहार करोगे ऐसे वैसे, तो परमात्मा नाराज होंगे। तो परमात्मा नाराज ना होना चाहिए, परमात्मा के नाराज होने के कारण तो हम यहाँ कष्ट उठा रहे हैं। सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांप दे, ना जानू किसी बात से मारा टूट न जावे ने। इतना भय लगे परमात्मा गुरुजी के दरबार में आकर परमात्मा तुल माने, और ऐसे कोई बात, ऐसा मन में कोई विचार, कोई ऐसे अवगुण ना हो जा जिससे गुरुजी का और आपका प्रेम भंग हो जा, यानी जो श्रद्धा आपकी है उसमें कोई फर्क पड़ जावे, वो नहीं पढ़ना चाहिए, फिर व्यर्थ हो जाएगा आपका जीवन। तो इस प्रकार हमने गुरु जी को परमात्मा मान के, क्योंकि जाना है भगवान के दरबार में, और वहां पर सबसे पहले इस दास के रूप में आपको प्रभु मिलेगा, परमेश्वर मिलेंगे। त्रिकुटी पर जाकर तुम्हारी वहां छटनी होएगी। यहां आप जी ने जैसी श्रद्धा इस दास के प्रति बनाई है, जैसे पौधे का, जैसे गेहूं का पौधा पक जाता है, बाली आ जाए ऊपर, अपने आप पता लग जाता है कि ये गेहूं है, और उसके अंदर एक कोबाड़ भी होता है, गेहूं जैसा डंगा खरपतवार, एज इट इज सेम टू सेम प्लांट होता है, वो दोनों एक जैसे पौधे होते हैं। लेकिन जब वो परिपक्व हो जाते हैं और दोनों के ऊपर वो बाली आ जाती है, तब उनका पता लगता है कि ये खरपतवार है, ये गेहूं है। ऐसे ही जिन्होंने यहां गुरु जी को परमात्मा तुल जान कर और निष्कपट भाव से, सच्ची श्रद्धा से साधना सेवा भक्ति कर रखी है, तो त्रिकुटी बजाते ऐसे बाल लकड़ा होगी थर अपने आप, और पता लग जाएगा कि यू खरा हर यू खोटा, तो उस खराब पौधे ने निकाल के किसान बाहर फेंक देता, फिर वो आग में फूंक दिया जाता है, व्यर्थ होता है गधे खाऊं से। और गेहूं को अपने ला करके कोठिया में डाल लेता है। तो ऐसे ही आप जी ने जैसे भाव से, जैसी श्रद्धा, जैसी भक्ति सच्चे दिल से यहां की है, तो वहां आपका फल आपके सिर पर लिखा पाओगा, और वहां फिर आपकी कैसी गतिविधि होगी, आपकी कैसी वहां भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, तो वहां उसी का, वहां एक समझो परीक्षा एग्जाम है आपका, और वहां भी आपने ऐसा ही मन में दोष कपट रखा जैसा यहां रख रहे हो वैसा ही वहां होगा, जैसा दिन में करते हो वैसा स्वप्न आओगा। अब जैसे आप जी को स्वप्न आते हैं, तो जैसा व्यवहार आप यहाँ इस दास के साथ कर रहे हो वैसा स्वप्न में आएगा, तो इसी प्रकार वहां भी एक स्वप्न होगा, आप होगे परमात्मा होंगे इस दास के रूप में, तो वहां अगर आपने, आपकी रिहर्सल में कमी रहेगी, आपने ट्रेनिंग ठीक ना करी, तो वहां से रिजेक्ट कर दिए जाओगे। फिर वो व्यक्ति कई हजार युगों तक मनुष्य जीवन भी प्राप्त नहीं करेंगे, तो वहां से गिरे हुए इंसान फिर बहुत देर से संभलते, क्योंकि इतना दिन और संग रहे और इतना ज्ञान सुना और फिर बकवाद भर ली। तो इस प्रकार पुण्यात्मा आप जी ने बहुत उत्तम स्थान पर जाना है, और उसके लिए उत्तम ही कर्म आपने करने होंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिए मिलाए। गुरु जी का कितना महत्व बता रहे हैं परमात्मा कबीर जी। जब तक आप जी की इतनी श्रद्धा गुरु में नहीं होगी, और जैसी श्रद्धा गुरु जी में है उतनी ही परमात्मा में काउंट होगी, माननी जाएगी। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं वहां, मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप, तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी किसके लागू पाए, सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए, अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको, यहां भी ऐसा ही होगा, ये नियम है। और तुम चरण छुओ और के किसी सासू के की तो ससुरे के की तो और बड्डे छोटे के सपने में भी ना छूने चाहिए अपन भाव। ये नहीं है कि हमने किसी का सत्कार नहीं करना है या किसी को प्यार नहीं देना है या शिष्टाचार खत्म कर देना है, नहीं, वो शिष्टाचार के तरीके गलत कर लिया हमने। और पुत्र वधु सासू के चरण छुया करे, चरण दाबेगी नू भगवान नू कहे बेटी बूढ़ सुहागण हो, हाँ दूध दान आओ कुत्ता फड़ियो, अब वो छोटी मोटी को पूर्व जन्म की को कमाई हो अब वो उतनी सौंप दी, आप खाली खोखा होगी। हम चरण इसलिए छुआ करते कि ये खुश होकर अपना आशीर्वाद दे दे, कुछ लाभ मिले, और चरण छोड़ते कौन सा बुढ़े के पैरों का दर्द ठीक हो है। अगर मान ले किसी बुजुर्ग के चाहे बड्डे के चाहे छोटे के, आपसे छोटे बाण बेटी भाई जैसे बहने हैं, आपसे बड़ी सास का की पिंडी दुखे हैं, तो उनके पैर दबाओ खूब अच्छी तरह, एज हे मरीज जान के आवश्यकता समझ गए, वो बेसक सेवा करो, मालिश करो, सिर में करो, पैरा में करो, तलव्या में करो, है किसी तरह सेवा करो, पां दो गर्म पानी ते जब को ठंड लाग रही होता है, सेवा कर दो। लेकिन एक औपचारिक जो चरण छूने ये भक्ति मार्ग में बाधक है, ये नहीं करना। तो वहां गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए, तो वहां गुरु जी के ही चरणों में समर्पित होना है तो भगवान प्रसन्न होगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। गुणात्माओं इसको एक एग्जांपल द्वारा समझाते हैं, जैसे आप जी के पुण्य जब तक चल रहे हैं पूर्व जन्म के, तो तब तक आपको कोई आपत्ति नहीं, संतान भी अच्छी है, पुत्र पुत्री होगी, उनकी शादी विवाह भी कर दिए, उनको भी संतान होगी भगवान उनके संस्कार वश, और जब तक आपके पुण्य हैं तो आप जी को कोई आपत्ति आई नहीं। जब आपके पुण्य अक्षीण हो जाएंगे उसके बाद आपके पापों का दौर शुरू होगा, तो पापों का दौर जब शुरू होगा तो कष्ट पर कष्ट आएंगे। जो व्यक्ति घने दुखी हो जाते हैं ना, वो क्या कहा करें कि हमारा राम रूठ गया, हमारा राम रूठ गया, हमारा भगवान रुष्ट हो गया, इसलिए हम पापति आएगी। अब राम रूठ गया, पुण्य अक्षीण हो गए, पाप शुरू हो गए, तो कहते हैं कबीर हरि जय रूठ जा, राम रूठ गया आपका, गुरु की शरण में जावे, कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जाए, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। आपका राम रूठ गया, दुख हो गया, आपत्ति आई, तो संत की यानी परम संत की शरण में जावे गुरु। अब गुरु कहो तो सदगुरु कहो, क्योंकि आप समझ गए इस बात को कि झूठे जो नकली हैं वो गुरु भी नहीं है लेकिन गुरु कहलाते, इसलिए सतगुरु कहा। लेकिन अब सतगुरु कहो चाहे गुरु कहो, आपको समझ में आ गया कि जो पूरे संत हैं उन्हीं के विषय बता। अब परमात्मा क्या बताते हैं, पर्वत पर्वत में फेरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले हैं जिन सारे सब काम। परमात्मा की तलाश में ना जाने कहां कहां पर्वतों पर गुफाओं में बर्म्या भटक्या, और संत मिले भगवान जैसे, संत मिल गए, परम परम संत मिल गए, वो सुख दिए जो भगवान दिया करता है। जैसे आप जी एक तरफ तो हैंड पंप है जिसमें से जल निकलता है मीठा, और एक तरफ आपके घड़े में जल है। जब तक आपके घड़े में जल है और आप कहीं घर पे हो चाहे कहीं मजदूरी कर रहे हो, दुकान पे, खेत में, कहीं पर भी हो, तो आपको कोई आपत्ति नहीं, प्यास लगी घट घट पानी पी लिया, और जब मटके का जल समाप्त हो गया घड़ेगा, फिर आपत्ति आई, समस्या आ गई, प्यासे मर गए, फिर चले कहां, हैंडपंप के पास। हैंडपंप पर गए और वहां हैंडपंप की सेवा की और फिर मटका भर लिया। सेवा में पूजा, यानी जो उसका विधि विधान है वो हलाया, उसको डंडा फेरा उसका हैंडपंप का हैंडल और जल भर लिया, मटका भर के आ गए। तो आप जी के पुण्य क्षीण हो गए, आपका मटका खाली हो गया। कहां जाइए, संत के पास, गुरु जी के पास, और जैसे गुरु जी साधना सेवा बताए वो हैंडल लाइए, यानी सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, साधना कीजिए, फिर मटका भर जाएगा। और यदि कहते गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने आत्मा एक तरफ हैंडपंप है और एक तरफ एक मटके में आपके घड़ा बढ़ा दे रहा है, और एक तरफ परमात्मा खड़े हैं, एक तरफ गुरु जी खड़े हैं। आपसे परमात्मा प्रसन्न कर रहे हैं कि तुम किसको चाहोगे, हैंडपंप को चाहेंगे हम, बुद्धिमान होगा तो। कोई नहीं होगा तो मटके का जल चाहिए या हैंडपंप, तो हैंडपंप में तो हजार मटके भर ले। और हैंडपंप, अब जैसे परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के रूठियां रूठते, गुरु की शरण में जाए और कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हरि ना करेसा है। आप जी ने हैंडपंप की ठीक मेंटेनेंस करी नहीं, हैंडलिंग ठीक करी नहीं, हैंडपंप खराब हो कर दिया। हैंडपंप खराब हो गया तो गुरु जी रूठ गए, अब वो जल नहीं मिलेगा, वो जल मिलेगा नहीं जो हैंडपंप से मिलना था। जब आपका राम रूठा, गुरु जी के पास गए, आपको विधि बताई, साधना दी, अपना आशीर्वाद से कुछ लाभ दिया, और यदि आप जी ने गुरु जी को रुष्ट कर लिया, हैंडपंप ही खराब कर दिया, तो फिर क्या मिलेगा। हैंडपंप खराब होगा तो बेसे गलाए जाइए डंडे ने, कुछ लाभ नहीं होना उस हैंडल से। गुरु के दिल से उतरे वो शब्द बेहु ना हो, ताको काल घसीट ही राख सके ना को। कई कह घर ने भक्ति कर लेंगे, क्योंकि यहां आते हैं उनके मन का दोष निकलता नहीं, और फिर उनको हम यहाँ खुरका धमका देते हैं, भाई बीड़ी शराब मास तुम्हारा तुम छोड़ नहीं रहे तो मत आया करो, फायदा क्या होगा। या कोई और गलतियां करते हैं, मन में दोष नहीं निकलता तो वो फिर घर छोड़ जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, खा लो धक्के। पृथ्वी पर कोई नहीं संत आज के दिन, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। और जानबूझ साची तजय करे झूठते ने, और ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। तो यहां से जो आप गुरु जी रूठ जाते हैं, गुरु के दिल से उतरे, जो गुरु जी के मन से उतर गया कि आदमी ठीक होना, या बहन बेटी भक्ति नहीं कर रही है, या बकवाद करते हैं, ड्रामाबाजी करें, तो वो दिल से उतर गए तो उनका नाम कट गया। और कहते उनको काल घसीट ही राख सके नहीं कोई। तो यहां क्या बताए हैं कि गुरु के रूठते हरि की शरण में जा, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं करे साए। हैंडपंप खराब कर लिया तो आपका जो है जल ने लाभ देना बंद कर दिया, जल मिलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार परमात्मा बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं है अंधे, होवे दुखी संसार में फिर अग काल के फंदे। यहां भी दुखी होंगे वो व्यक्ति जिस किसी पुण्यात्मा ने यहां पर इस दास के साथ रहकर भक्ति करी 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, और फिर अपनी नालायकी ते को गलती करके यहां से निकल गया और चला गया कहीं और धक्के खा भैया घर पे रहता है। तो उसको जब तक उसके पुण्य इस 3 साल में किए हुए सत साधना और भक्ति के जो पुण्य हैं वो जब तक उसके चलेंगे, वो मटका भरा हुआ है, भर लिया उसने, और अग हैंडपंप खराब कर दिया। जब तक वो घड़ा पानी का चल रहा है, रोजाना 1 गिलास 2 गिलास 4 गिलास घट ही रहे, उसमें प्रवेश नहीं हो रहा, आउटपुट ही है, इनपुट नहीं है उसके अंदर, तो एक दिन वो अक्षीण होंगे। हो सकते हैं वो 2 वर्ष में हो, 4 वर्ष में हो, 5 वर्ष में हो, 10 वर्ष में, फिर उनकी वही दुर्गति फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि हैंडपंप खराब कर दिया। और जो हो गए गुरुद्रोही, ठीक है ऐसे व्यक्ति है नया, फिर दुखी सुखी बान लग रहे हैं, एक साल माया कोई चार साल माया धक्के खा के बिरान मैटी होली दोबारा फिर आ रहे आना चाहिए कोई बात नहीं एक दो बार हम खुरकावा धमकावांगे लेकिन हमने तो उतने अच्छे लगते हो अपने बच्चों की तरह और जो हो जाते हैं गुरुद्रोही उसको तो कभी असंग जन्म भी भगवान मनुष्य जन्म नहीं देगा ठीक है अब तक वो पुण्य है उसके चलते रहेंगे जितने एक वर्ष चलेंगे दस वर्ष चलेंगे बीस वर्ष चलेंगे आगे वह दुर्गति होगी इस प्राणी की सोची भी नहीं जा सकती तो पुण्यात्मा जय इब कै सतगुरु मिले जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख अखोरो चरण ऊपर शीश धरू हूं कहो जो कहनी हो। अब क्या बताते हैं ये जो वाणी हम बोलते हैं प्रतिदिन उनका अब निष्कर्ष समझ में आएगा आपके गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हम जैसे तुमको बहुत हैं तुम जैसे हमको नहीं। अब जब सही ज्ञान आपको हो जाएगा उससे मैं समझ में आवेगी कि हे परमात्मा हे गुरु जी आप हमसे भूलियो मत आपके पास से लाखों लोग आ जाएं क्योंकि सब दुखी आत्माएं आकर यहां सुख ग्रहण करती हैं तो वो तो आपको चाहेंगी आप हमने ना बोलिए क्योंकि आपको तो मेरे जैसे बहुत मिल जाएंगे आत्माएं भगत लेकिन मुझ भगत को आप जैसे सतगुरु नहीं मिलेंगे इस पृथ्वी पे। जय इब के सतगुरु मिले सतगुरु नकले गुरु तो मेरे मिल लिया हमने सब दुख आंखों रो ये बातें हैं कोई आत्मा जो दूसरे पंथों के पास संतों के पास 20-20 वर्ष 30-30 वर्ष बर्बाद करके रोते हैं यहां पर उनकी आंखों के आंसू नहीं सूखते जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है रात को भी कहते बैठ कर रोते हमारा क्या हाल हो गया ये कहां गए इतना जीवन बर्बाद कर दिया हमें हैं ऐ परमात्मा बड़ी दया हुई अब सतगुरु का मार्ग मिल गया। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आंखों रो चरणों ऊपर शीश धरूं हूं कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे वो पूछेंगे कुशलाते आज अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। अब जो दूसरे पंथों से आते हैं जब उनको पता चल जाता है क्योंकि इस ज्ञान पुस्तक हमने छापी है ज्ञान गंगा उसको पढ़कर अब दूसरे पंथों की पुण्यात्माएं रो रो कर आ रही हैं भटक रही हैं और बताती हैं कि इतने दिन मैंने वहां बर्बाद कर दिए कुछ नहीं मिला ये नुकसान हो गया इतना जीवन बर्बाद हो गया। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलाते आद अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। और फिर कहते हैं गुरु जी आप ना भूलियो हमें और आप भूल गए फिर कहां जाएंगे हमें कोई ठिकाना नहीं इस पृथ्वी पर हम जैसे तो आप जी को बहुत अच्छी आत्माएं और भी बहुत मिलेंगी मिल जाएंगी लेकिन आप जैसे गुरुदेव हमें नहीं मिल पाओगे।

0: सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: गैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है यां तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जा होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैन लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज का पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 Avenue, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंड

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारी जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाओ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत सास्त जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई तुद आपे सृष्टि सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान ओई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हौ पाई रहाओ सब तेरी तू सब नी त्याया जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणै जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया
तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखह जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ पैले निवासा, पानी पावक तिन है किया। पंक जो मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेतस मूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, पही परापत मानुख देहुरिया। गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरै कितै न काम। मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भवजल तरन कै। जन्म वृथा जात रंग माया कै। रहाओ।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो, आप हाथ दै मोहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिय, सब बैरन कौ आज संगरिय। पूरन होए हमारी आशा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहाओ सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारी, साहिब संत सहाय प्यारी। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जाब उद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जाब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताक कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी।
कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगर। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलीश करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहि उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा।

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तो हे बखाने ओ दोहरा

सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरै घर ता तेरै सब किश है जिस देह सो पावै सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरै साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुन हो संत हो शबद धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शबद तित घर सभागै घर सभागै शबद वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हो।

वाज्ये आनहादतूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर धारो तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो सलो

सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां दे साहु।

हर गुण कहते कहन न जाई, जैसे गूंगे की मिठाई, रहाओ रसना रमत सुनत सुख श्रवना, चित चेते सुख होई, कहो भीखन दोय नैन संतोखे, जह देखा तह सोई, रसना रमत सुनत सुख श्रवना, चित चेते सुख हो।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
1: कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street Northeast Calgary।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
3: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
4: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।